0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಮಯ 8 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಹಿಂದಿ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ.
1: ನಮಸ್ಕಾರ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸೇ ಸಮಾಚಾರ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೈ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅರೋಡಾ. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे. दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी. भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे. जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता. रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए. और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में इंग्लैंड को मात दी. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे. इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे. एक रिपोर्ट.
2: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है. सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है. सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं. इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं. यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है. वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं. यह यात्रा 7 अक्टूबर

0: बढ़तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
2: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर तक नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
3: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
2: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
4: बहुत अच्छी बात, जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
2: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
5: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1,170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5,00,000 रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
6: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5,00,000 लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है।

0: इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एक मुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्प विकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रुशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रुशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया उई से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रुशिबिना का 3रा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझू एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज़्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7वें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में बी सविताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार 7वीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने 7वें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी 7 मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल 2 दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
0: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, 4 बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है, बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है, रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to interact with participants of Seva Yatra from Varnagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan this morning. Delhi government approves Durga scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women in national capital. Bharat Taxi launched in Lucknow, Gorakhpur, Varanasi, Kanpur and Prayagraj in Uttar Pradesh. All banks including regional rural banks to remain open this Sunday for convenience of customers. India's Roshibina Devi bagged silver medal in Wushu at Asian Games in Japan. Satnam Singh and Salman Khan secure bronze in rowing men's double sculls. And India beat England 2.5 to 1.5 in round 7 of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will interact today via video conference with participants of Seva Yatra travelling from Varnagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan. The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. A report.
7: The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. The participants are travelling through towns, districts, talukas and villages. with the program focusing on taking community service and public engagement activities to the grassroots. The journey is not limited to a motorcycle expedition, but is designed to bring together service, communication, youth participation, social welfare, cultural connect and community mobilization at different locations along the route. 10 groups are undertaking the Vadnagar to Varanasi

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देशसेवा के सातवें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही है आकाशवाणी संवाददाता फरहत नाज। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। सेवा संकल्प अभियान के इस विशेष अंक में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों का विश्लेषण करेंगे और इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ फरहत नाज। आज का विषय है स्वच्छता से सम्मान। गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है और इस एक वाक्य ने भारत में जन आंदोलन का रूप ले लिया। कहानी शुरू हुई निर्मल गुजरात से और बन गई स्वच्छ भारत मिशन। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक श्री अक्षय राउत जी। अक्षय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार।
0: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रोशन गौड़ जी। रोशन जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्मल गुजरात के बारे में। तो अक्षय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2007-08 में गुजरात ने स्वच्छता को सिर्फ योजना नहीं एक अभियान बनाया। इस निर्मल गुजरात में ऐसा क्या था जो बाद में स्वच्छ भारत का आधार बना?
1: आप जिस बात का जिक्र यहाँ कर रहे हैं तो दुनिया के सामने भारत से तो शुरुआत हुआ ही, गुजरात से बल्कि शुरुआत हुआ। ये एक नए गवर्नेंस मॉडल का एक देखने लायक चीज है, क्योंकि सरकारें जब बनती हैं तरह तरह तरीके से सरकार चलाती हैं। मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और सबका पॉलिसी होता है, प्रोग्राम्स होता है, लेकिन ये एक अनोखा तरीके की काम कर

0: के तरीका जो कि गुजरात से शुरू हुआ 25 साल पहले और उसमें पूरा स्केल अप जिसको बोलते हैं
1: जी
0: पैन इंडिया बोलते हैं, एक मोटा मेला जो कि यहाँ भी 12 साल से उस तरह का जो प्रक्रिया है वो जो एक्सपेरिमेंट गुजरात में हुआ था उसको लाया गया। और आपने स्वच्छता की जिक्र किया, वहां जो मेन कैरेक्टर उसका था निर्मल गुजरात का वो था कि कम्युनिटी को मिलाया जाए। ये जो स्वच्छता कार्यक्रम है या सरकार के कार्यक्रम है नहीं, ठीक है सरकार अगुवाई करेगा, पॉलिसी बनाएगा, मिशन बनाएगा, पैसा कुछ हो सकता है लगाएगा, लेकिन लोग इसको सम्मान के हिसाब से लें। विलेज कम्युनिटी हो, अर्बन कम्युनिटी हो, पंचायत हो, ब्लॉक हो, ग्राम सभा हो, ये सब ऐसे मिलकर जुड़े कि उनका कार्यक्रम है, कि वो उनके बच्चों के हेल्थ के सवाल है, उनकी महिलाओं के इज्जत के सवाल है, सिक्योरिटी के सवाल है, पूरा समुदाय के हेल्थ के सवाल है। और स्वच्छता जो सामने आ जाकर जान नहीं ले लेता है उसका बहुत दूरगामी जो परिणति होते हैं। और वो पता लगा है जब ये स्वच्छ भारत मिशन निर्मल गुजरात से शुरू होके, स्वच्छ भारत मिशन का स्केल ही कुछ अलग था, क्योंकि हम लोग 6.5 लाख, गुजरात तो एक स्टेट हुआ, वहां एक प्रयोग हुआ, लेकिन उसको जब देश की जमीन पर लाया गया पूरा 6.5 लाख, उसमें गांव है करीब 5,000, शहर है और 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, वो एक कुछ अलग से था। लेकिन ये गवर्नेंस मॉडल के और भी एक रूप है कि ये स्केल में बिलीव करता है, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे पायलट में करेंगे फिर 15 साल में करेंगे फिर 25 साल में करेंगे, ऐसे नहीं है। यहाँ एक सनसेट क्लॉज डाला गया 2014 में जो शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन, चाहे निर्मल गुजरात के प्रयोग से हो, सिक्कर और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, निर्मल गुजरात उसमें जरूर मुख्य है, क्योंकि उस वहां के मुख्यमंत्री बाद में प्रधानमंत्री बने मोदी साहब, तो वो इस मिजाज को लेकर आए कि हमें स्केल पर करना है, पूरे शहर में करना है, पूरे गांव में करना है, पूरे देश को स्वच्छ करना है, तो 12 करोड़ टॉयलेट बने, उसमें एक्सेस और यूसेज ये दोनों मूल मुद्दे थे। और गांव के मुद्दे ज्यादातर थे, ऐसे नहीं कि शहर में समस्या नहीं था, शहर की समस्या में अभी जूझ रहे हैं सेकेंड फेज में, वेस्ट मैनेजमेंट में, कचरा का प्रबंधन में, लेकिन जो पहला फेज था जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ, कुछ गुजरात की न्यू बना था उसमें जो पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स आए और स्वच्छ भारत मिशन का अभियान का शुरुआत हुआ 2014 में लाल किला के प्राचीर से लेकर, वहां एक पॉइंट रखा गया था, एक लक्ष्य कि 2019 तक खुले शौच से मुक्त कराना है देश को। सुनकर अभी भी लोगों को ताजुब होगा, हमारे श्रोताओं को, कि 60 करोड़ देश में खुले शौच करने वाले थे जो कि पूरे दुनिया के खुले शौच करने वाले लोगों के 60% था, और 2019 में खुले शौच से देश को मुक्त कर दिया गया। सारे गांव, सारे जिले, 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने को डिक्लेयर किए अक्टूबर 2, 2019 में कि हम खुले शौच से मुक्त है, लेकिन अभी भी रास्ता सफर बाकी है।
1: बिल्कुल। और रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले स्वच्छता को सिर्फ सरकार या सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब लोग खुद कचरा फैलाने से बचते हैं और आसपास सफाई भी रखते हैं, तो अगर हम बात करें गुजरात में स्वच्छता की, तो जमीनी स्तर पर आपको किस तरह का बदलाव वहां पर देखने को मिला है?
2: देखिए, जो 2007 में निर्मल गुजरात योजना शुरू हुई थी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस समय मुख्यमंत्री थे तो पहला उनका ये अनुभव था कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए, और उन्होंने जो निर्मल गुजरात शुरुआत की तो उन्होंने कहा केवल सफाई नहीं, इसमें कचरा प्रबंधन भी होना चाहिए, स्वच्छ पानी भी होना चाहिए और लोगों के पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पूरे राज्य को उन्होंने एक साथ जोड़ा, लोगों को उन्होंने इसमें भागीदार बनाया, और वो इसलिए बनाया कि जैसे आपने कहा कि इसमें केवल सरकारी कर्मचारी और सरकारी सफाई कर्मचारी अगर केवल इसमें भाग लेंगे तो नहीं हो पा रहा था। लोगों की मानसिकता बदली कि ये आपका है, आपको स्वस्थ रहना है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, जो खर्चा आपका बीमारी में खर्च होता है वो आपका बच जाएगा। और हमने देखा कि जब वो अभियान चला पूरी हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई और कुछ राज्यों ने उसको एडॉप्ट किया, और उसके बाद भारत सरकार ने भी निर्मल भारत अभियान के नाम से उसको एडॉप्ट किया। और जब प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी 2014 में, तो वहां उन्होंने फिर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। तो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे हो, जन भागीदारी कैसे हो, इसकी शुरुआत 2007 से निर्मल गुजरात से थी, और उसमें जनता की भागीदारी और वो किस बड़े स्तर पर हो सकता है वहां से शुरुआत हुई।
1: जी, तो हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुन लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
3: श्रोताओ, स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। साफ घर, साफ गली, साफ गांव और साफ शहर का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन से है। इसी सोच के साथ 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य देश में स्वच्छता को बढ़ावा देना और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना था। इसकी शुरुआत सबसे पहले लोगों के घरों में शौचालय की सुविधा पहुंचाने और खुले में शौच की समस्या को खत्म करने

0: पर था। वर्ष 2014 में ग्रामीण स्वच्छता लगभग 39% थी। वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता हासिल की गई और 2014 से 2019 के बीच 10 करोड़ 28 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। लेकिन श्रोताओं, स्वच्छता का मतलब केवल शौचालय बनाना नहीं है, अब ध्यान इस बात पर भी है कि गांव और शहर कचरे से मुक्त और साफ सुथरे रहें। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में ठोस कचरा और गंदे पानी के प्रबंधन पर भी जोर दिया जा रहा है। 17 सितंबर 2026 तक देश में 5.69 लाख से अधिक गांव ODF प्लस हो चुके थे। इनमें 5.25 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल की श्रेणी में है। वहीं 5.38 लाख से अधिक गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन और 5.65 लाख से अधिक गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है। अब सवाल है कि ODF प्लस का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब सिर्फ खुले में शौच से मुक्ति नहीं है, गांव में शौचालयों का इस्तेमाल जारी रहे, कचरे का सही प्रबंधन हो, गंदा पानी सही तरीके से संभाला जाए और गांव साफ दिखाई दे, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसी दिशा में स्वच्छता ही सेवा अभियान भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 में ये अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है और इसकी थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। इसका जोर लोगों की भागीदारी, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, कचरा प्रबंधन, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा तथा सम्मान पर है। श्रोताओं, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, स्वच्छता के काम में लगे सफाई कर्मचारियों का सम्मान। सफाई कर्मचारी हमारे गांव और शहरों को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए स्वच्छता के साथ उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा 2026 में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा उपकरण और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया है। श्रोताओं, स्वच्छता की ये यात्रा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर नागरिक की भूमिका है। घर का कचरा अलग रखना, सड़क पर कचरा नहीं फेंकना, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना और दूसरे लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, ये छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत मिशन अब केवल शौचालय निर्माण का अभियान नहीं रहा, बल्कि स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, लोगों के व्यवहार में बदलाव और जन भागीदारी से जुड़ा एक व्यापक प्रयास बन चुका है। क्योंकि जब हमारा घर साफ होता है तो परिवार स्वस्थ रहता है, जब गांव और शहर साफ होते हैं तो जीवन बेहतर होता है, और जब सफाई करने वाले व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा मिलती है तब स्वच्छता वास्तव में सम्मान से जुड़ती है। यही है स्वच्छता से सम्मान तक की यात्रा। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं मनोज।
1: अक्षय जी, आपसे इंदौर की अगर बात की जाए तो 7 बार नंबर 1 ये बना, कैसे बना?
2: देखिए, उसका एक मिसाल छोटी सी बताता हूँ। मैं इंदौर बार बार गया हूँ। बोलते हैं झोलाधारी इंदौरी बोलते हैं वहाँ लोगों को।
1: अच्छा।
2: मतलब कोई अगर घर से निकलेगा अपने पास एक झोला लेके जाएगा, क्योंकि रास्ते में कोई कचरा अपना जो अपने जरिए से हो या कहाँ से कचरा दिखा या अपने कोई खरीदा कुछ छिलके निकले तो उसको झोला में लेके घर में आएगा, उसको डिब्बे जो है उसका निपटान करेगा। जबकि भारत अभी तक भी हारा नीला में जूझ रहा है और स्वच्छ भारत मिशन की जितना काम करते हैं लोग, अर्बन लोकल बॉडीज हो, पंचायत हो, वो लोगों को समझा के थक गए कि भाई हारा नीला, एक सूखा और गीला कचड़े अलग अलग रखो, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो, वेट या ड्राई हो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने और आने वाले जो कचरा प्रबंधन के 26 के रूल्स के मुताबिक 4 अनिवार्य कर लिया, 2 से नहीं चलेगा, 4 करना पड़ेगा, जो स्पेशल कचड़े हैं और सैनिटरी कचड़े हैं उसको अलग अलग रखना पड़ेगा। लेकिन इंदौर में आप जाएंगे बहुत पहले 6 कचड़ों के डिब्बा होता है लोगों के घर, माने हर कचड़े का अलग अलग तरीके से निकाल कर उसको रोज डालना, उसके लिए समय लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, रिसोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन करते हैं लोग। और क्योंकि जो कचड़ा सेग्रीगेट होता है या जो कचड़ा को भाग भाग अपना तरीके से किया जाता है वो सोना बनता है, वो बोलते हैं ना कचड़ा से कांचन बनता है, लेकिन जो सेग्रीगेटेड नहीं होता है वो बीमारी का जड़ बनता है, क्योंकि वो जाके फिर लैंडफिल में डालता है या रास्ते की साइड में छोटे हिप्स बनते हैं, फिर बड़ा लैंडफिल शहर के बाहर बनते हैं और दुनिया भर का उससे प्रॉब्लम निकलता है। जब तक हम लोग चाहे जो सोर्स है, जो कचरे का सोर्स है, चाहे घर हो, फैक्ट्री हो, कॉलेज हो, मॉल हो, या इंस्टीट्यूशनल एरिया हो, जहां अगर जहां से

0: निकलता है कचरा, वहां से अगर डिवाइड होकर नहीं रहता है तो प्रॉब्लम है। तो इंदौर में वो होता है। इंदौर के लोगों ने अपने सम्मान के साथ, अपना शहर के सम्मान के साथ सफाई को जोड़ा है। यहाँ तक वहाँ सफाई टूरिज्म होता है, लोग आके देखते हैं कि भाई सफाई यहाँ कैसे हुआ। वहाँ पार्क बने हैं सफाई की, जो कचड़े की जो बहुत बड़ा बड़ा होता है जमावड़ा, उसको निकाल कर एकर्स जमीन निकाल के वहाँ पार्क बना जाता है, और सबसे बड़ा बायोफ्यूल का वहाँ प्लांट भी बना है, क्योंकि उसी से शहर का ट्रांसपोर्ट भी चलता है। और ये एक देखने की जगह है। एक जगह में तो वहाँ एक फूड मॉल्स उन्होंने बनाया है, जो की कचरा की जगह को साफ करके तो वो बना है। और वहाँ की जो सैनिटेशन वर्कर्स की जो डिग्निटी है, लाइफ कंडीशन है, उनको जो फैसिलिटी है, उनका जो तरीके है, वो देखने के लिए बाहर के लोग जब आते हैं, जो तीर्थ में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, उज्जैन वो इंदौर में एक स्टॉप ओवर लेते हैं कि हाँ देखें। लेकिन मैं आपको एक चीज पर क्वेश्चन करता हूँ, एक इंदौर से देश का काम नहीं चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के जो मैनेजर्स हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो भी इसको समझते हैं। इसीलिए अभी एक नया बनाया गया है कि इनको गोल्ड लेवल डाल के इनको कॉम्पिटिशन से अलग कर दिया जाए और दूसरों को भी मौका दिया जाए, जैसे सूरत, नवी मुंबई, दूसरे शहर भी आ रहे हैं उसके साथ शामिल होने के लिए। और ये सारे चीज के लिए जो गवर्नेंस मॉडल को मैं फिर एम्फसाइज करता हूँ, जो गुजरात से गवर्नेंस, और वो स्वच्छता में खाली कंसंट्रेट नहीं है, पानी के पर भी है, और पंचायती सिस्टम पर भी है, वो जीएसटी सिस्टम पर भी है, वुमेन्स एम्पावरमेंट पर भी है, हेल्थ डिलीवरी पर है, बहुत सारी चीज जो कि पब्लिक सर्विसेस होते हैं, उसका एक तरीका है काम करने का, उसको मैं पॉलिसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोलूंगा। भाई आपका पॉलिसी, सब लोग सोचते हैं कि पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन दो है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये गवर्नेंस मॉडल जो 25 साल से जारी है, ये भाई खाली पॉलिसी नहीं, पूरा देश में होगा, सब जगह होगा, और इम्प्लीमेंट बढ़िया से होगा, इस तरह से चल रहा है, इसलिए स्वच्छता में काम हो पाया है। स्वच्छ भारत मिशन का सक्सेस के राज है।
1: बिल्कुल, आपने नागरिकों की बात बताई वहां पर, तो एक बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है सरकार और आम नागरिकों के बीच में तालमेल बिठाना, तो जिसे हम सिविक सेंस के तौर पर भी कह सकते हैं, तो वहां के लोगों में सिविक सेंस कैसे जागा?
0: सिविक सेंस ना, ये जो लोगों ने अगर शहर की, या मेरा शहर की बात छोड़ दीजिए, मेरा घर की, मेरा टोली की, मेरा कॉलोनी की, मेरा आरडब्ल्यूए की, सम्मान के साथ इसको जोड़ूंगा, ये इंदौर वाले जो हैं अपना इज्जत के साथ इसको जोड़ दिए हैं ऐसे। और वहां जो नेचुरल सिटीजन का रेस्पॉन्स जो है ना, बहुत अच्छा रहा है। लेकिन बात है कि ये जो चीज है, ये जो इज्जत की जो अपना जो चस्का, ये बाकी शहरों में भी लगना शुरू हुआ है, लेकिन जितना जल्दी होके लगे तो ये जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन दो अलग अलग इकाई है, और एक महुआ के अंदर है और दूसरा है जल शक्ति के अंदर, मंत्रालय के अंदर, ये काम तो जारी है। लेकिन एक दो साल में मुझे लग रहा है कि अगर लोगों का निरंतर प्रयास रहा तो हमारे शहर भी आगे आगे ठीक हो जाएंगे।
1: बिल्कुल रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण को आपने कैसे जाना, और क्या इससे नगर पालिकाओं में वाकई काम करने का डर और सम्मान दोनों आया है?
2: जो सर ने भी बात कही है, इंदौर से ही मैं इसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि जब ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो 2016 में कहा गया कि आप स्वच्छ सर्वेक्षण कीजिए, और शहरों के बीच में एक कंपटीशन कराया गया कि जो नंबर एक पे आएगा, नंबर दो पर आएगा, तो वो जो है हर शहर ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो शुरुआत में 73 शहर थे उसमें, यही इंदौर जो 25वें नंबर पर था 2016 में, और 2017 में नंबर एक पर आ गया। और वो सिर्फ इसलिए आया कि उन्होंने जो मानसिकता बदली, कि जो हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर से कूड़ा उठा के किसी एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, और वो एक जगह फिर धीरे धीरे धीरे वो पहाड़ बनता चला जाता है। तो इंदौर में लोगों ने जो घर घर से कूड़ा उठाना शुरू किया, और उसमें उन्होंने, जैसे सर ने कहा कि उन्होंने अलग अलग डिब्बे बनाए, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, सैनिटेशन का अलग, हैजार्डियस अलग, तो उनको ठिकाने लगाना का भी इंतजाम फिर ठीक हो गया। तो यहाँ से कंपटीशन शुरू हुआ। तो ये सर्वेक्षण का फायदा हुआ कि अब इसमें सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने दिल्ली में देखा कि जो नई दिल्ली नगर पालिका है, ये तो साफ रहता है, लेकिन जो हमारा दिल्ली नगर निगम का क्षेत्र है, वहां हमने देखा कि अभी भी वहां समस्याएं हैं। तो कंपटीशन में आने के से क्या हुआ कि लोगों की पार्टिसिपेशन तो रहा ही, उनके साथ साथ जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंत्रालय हैं, इसमें बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इसमें सरकार के बहुत सारे जो विंग हैं, वो सबने मिलकर काम किया, तो उसका सर्वेक्षण का फायदा ये हुआ कि सभी शहर इसमें कंपटीशन में आ गए, और कंपटीशन में एक दूसरे से अच्छा कैसा करें, इसलिए शहरों में अच्छा काम हो रहा है।
1: अक्षय जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, इंदौर के बाद हम सूरत की बात कर लेते हैं। तो 1994 में सूरत को प्लेग सिटी कहते थे, लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे। फिर 2006 में तापी में भयानक बाढ़ आई, सूरत ने इस तबाही को मौके में कैसे बदला?
0: आप दूसरे बात पर अभी चले गए हैं लेकिन रिलेटेड है, एक पानी की बात पर चले गए हैं। जो फ्लड था वो तापी रिवर के साथ कनेक्टेड था और उसका गेट खुलने नहीं खुलने पर था, कभी कभी उसका होता है कि वो नेचुरल डिजास्टर था, एक एस्टिमेट किया गया है, हो सकता है कि कोई लोगों का मैनेजमेंट में भी कुछ दिक्कत हो, लेकिन उसके बाद वो सिक्स है। जैसे भूज का अर्थक्वेक भी हुआ था, मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा बाढ़ था, करीब करीब सूरत शहर के काफी एरिया डूब गए थे उसमें, और उससे एक तो एक रिलीफ और रिहेबिलिटेशन क्विक रिस्पॉन्स कैसे हुआ वो एक देखने की बात है। हम अभी स्वच्छ भारत से थोड़ी एक बाहर जा रहे हैं क्योंकि हम फ्लड मैनेजमेंट वाटर गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना गुजरात से स्वच्छ भारत की निर्मल गुजरात के जरिए से सीख आया है जिसे स्वच्छ भारत बनना है, ऐसे ही नर्मदा का वाटर को लाके पहुंचाना डिफिकल्ट एरिया में, ड्राउट प्रोन एरिया में, और पानी को रोकना जहां रोकना है, फ्लड मैनेजमेंट करना, और जहां सूखा है वहां पानी देना, और घर घर में टैप पहुंचाने का प्रबंधन करना, इसमें भी उसी टाइम में सरकार जो हम लोग बात कर रहे हैं 2000 से 2012 सरकार की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में गवर्नेंस में ये प्रयोग बहुत हुए थे और उसकी नतीजा आगे बढ़ाकर अभी जल जीवन मिशन मान लीजिए, जो कि अभी 80% घरों में टैप वाटर कनेक्शन दिया हुआ है रूरल एरियाज में, माने क्योंकि वो पानी की घर में पानी की फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन देना बहुत बड़ी बात है, वो भी गुजरात की ये सारे प्रयोग जो आपने जिक्र किया सूरत वगैरह से, वो क्योंकि पानी बहुत होता है तो लोगों का विनाश होता है, पानी का कम होता है लोगों का प्यास बढ़ता है, विनाश होता है, तो दोनों की चीज को इससे संतुलन करने का, नर्मदा की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को गुजरात के लिए उपलब्ध कराना और जो स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें सहमत लाना, इसमें उस टाइम का गुजरात सरकार जिसमें कि श्री नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर के हिसाब से अगुवाई कर रहे थे बहुत बड़ा भूमिका रहा है, उससे सीख मिला है। सूरत प्लेग सिटी के नाम में माने कष्ट लोगों को बहुत मिला था, और वो प्लेग क्यों हुआ था, सफाई नहीं होने के कारण, उसका मूल कारण सफाई, इसीलिए बहुत अचंबा की बात है और लगता है कि भारत कितना आगे बढ़ा है कि जहां प्लेग हुआ था शहर लोग छोड़ दिए थे, शहर का लोग जाना बॉयकट कर दिया था कि भाई गंदगी इतना है कि यहां प्लेग होकर लोग मरते हैं, तो वो हुआ भारत की सबसे स्वच्छ शहर, वही इंदौर के साथ कंपटीशन करके आया, क्योंकि काम ऐसे हुआ है और वो स्वच्छ भारत मिशन की टाइम में हुआ ज्यादातर वहां न्यू पड़ गया था लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के टाइम में हुआ, उस स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट के हिसाब से सूरत 2 साल पहले पहली बार आया वो पैदाने पर, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और नवी मुंबई भी आया है, बहुत कुछ शहर और भी कुछ शहर हैं जो आगे बढ़कर आए हैं, इंदौर पहले आया लेकिन इन्होंने सब क्लब अभी अलग अलग कर दिया है, इनको गोल्ड क्लब अलग कर दिया है, क्योंकि सो दैट कि ऐसे नहीं होंगे कुछ शहर बार बार और पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं, छोटे छोटे शहरों को मौका मिलता है। मुझे लेकिन लग रहा है कि फिर भी मान लीजिए 4,800-5,000 शहरों में आज की तारीख में जो 3-स्टार रेटिंग बोला जाता है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि हाँ पूरी तरह स्वच्छ माना जाएगा, मुझे लग जाए कई 100 हैं, 1,000 तक भी नहीं है, तो इसीलिए हमें कुछ सफर और भी बाकी है, रास्ता सही है लेकिन मंजिल थोड़ी और दूर है, लेकिन इतना दूर नहीं है कि हो नहीं पाए, क्योंकि इसका संभावना गुजरात में बना, देश में प्रमाणित हुआ, देश खुले शौच से मुक्त हुआ 2019 में, अभी ये कचड़े से भी मुक्त होगा क्योंकि नियत और जो मेहनत वो दोनों चल रहा है, लोगों को थोड़ी सी और जोड़ना है। और जैसे अब देखिए गांव के लोग जितना बढ़िया से जुड़ गए फेज वन में, शहर के लोग इतना बढ़िया से अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो इसीलिए फेज वन की जो आग है लोगों की, जो इग्नाइट फायर था, वो फायर को वापस लाना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, और महात्मा गांधी जी का मानना भी था कि अपने अंदर की स्वच्छता एक पहली चीज है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए, बाकी बातें इसके बाद होनी चाहिए, और वैसे भी हर घर में स्वच्छता पहले ही पढ़ाई जाती है कि स्वच्छ रहना है,
0: क्योंकि एक चीज आप देखिए जैसे भूख हुआ, नींद हुआ, ये कंजेनिटल है, ये जो बच्चा जन्म होता है उसको जरूर भूख होगा, सोएगा, लेकिन सफाई नहीं करता है, सफाई शिक्षा से आता है। घर के बड़े जो हैं, चाहे बड़े भाई हो, पिताजी हो, माँ बहन हो, तो छोटे बच्चों को सिखाएंगे कि भाई सफाई तुम्हारा काम है, तुम साफ रहो और साफ करते रहो चारों तरफ। ये विदेशों में सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ये इनबिल्ट है, तो हमारे परिवार ये जो, क्योंकि ये अपने आप बायोलॉजिकली नहीं आता है, ये सोशियली आता है, एजुकेशनली आता है, इसीलिए जो कैंपेन है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार कभी ऑफिशियली इसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन वो बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, वो हमेशा बोलते हैं, क्योंकि ये कैंपेन है, निरंतर चलता रहेगा, लोगों को उसकी तरफ पुश करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में भी जिसको स्वच्छ भारत मिशन के लिए सक्सेस का न्यू माना गया है, 4 P, फर्स्ट पी है पॉलिटिकल लीडरशिप, वो प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, वो हमेशा आगे रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में, सबको वो सबसे टॉप कम्युनिकेटर, टॉप लीडर्स, वो स्वच्छ भारत मिशन उनका दिल की स्पंदन है, ऐसे मुझे लग रहा है। दूसरा है पब्लिक फाइनेंस, कभी सैनिटेशन के ऊपर स्वच्छता के ऊपर देश में इतना पैसा नहीं लगा था जितना पैसा इन्होंने दिया है और फाइनेंस मिनिस्टर्स ने भी दिया है। तीसरा है पार्टनरशिप, क्योंकि ये कोई छोटा मंत्रालय का काम नहीं है, सारे मंत्रालय, सारे कॉरपोरेट, सारे मीडिया, सारे सिविल सोसाइटी लोग और सारे इंटरनेशनल एजेंसी मिलकर करेंगे पार्टनरशिप। और चौथा सबसे बड़ा स्तंभ है पीपुल्स पार्टिसिपेशन, और लोग, ये लोगों का मूवमेंट है, लोगों को संभालना पड़ेगा, लोगों को साफ होना पड़ेगा, लोगों को साफ करना पड़ेगा, साफ नहीं तो माफ नहीं।
1: बिल्कुल।

0: अब रोशन जी, अब आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि जब हम सफाई मित्र की बात करते हैं, सुरक्षा, वेस्ट मैनेजमेंट, महिलाओं की गरिमा की बात करते हैं, तो स्वच्छता का अर्थ कैसे बदला?
1: देखिए, इसमें दो तीन बातें समझनी जरूरी है
0: जी।
1: पहले हम, चूंकि मैं गांव से आता हूं, तो हम लोग खुले में ही शौच जाते थे
0: जी।
1: और गांव में तो इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन शहरों में मैंने देखा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते थे इसके कारण होते थे, इसलिए महिलाएं अंधेरा का इंतजार करती थी। और प्रधानमंत्री ने जब 2014 में लाल किले की प्राचीर से भी यही कहा था कि महिलाओं को जब इंतजार करना पड़ता है, या तो सुबह उनको जाना पड़ता है और या फिर उनको शाम को इंतजार करना पड़ता है, इसके कारण उनके कई बीमारियों से जूझती हैं। तो अभी मैं आंकड़े पढ़ रहा था WHO के, तो WHO ये कहता है कि कम से कम 3 लाख मौतें हैं जो स्वच्छ भारत अभियान से बची हैं, उनकी बीमारियां दूर हुई हैं। और प्रति घर से अगर हम अनुमान लगाएं तो 50,000 रुपए की दवाइयां जो लोग खाते थे वो बची हैं। और इसके अलावा जो सर्कुलर इकोनॉमी
0: जी,
1: जो भी सर बात कर रहे थे कि कचरा है, कचरे का ढेर लग रहे हैं, तो अभी केवल हम उसको कचरा नहीं मान रहे, यानी जो वेस्ट टू वेल्थ, जो हमारा कचरा है उसको हम कैसे उसकी उपयोगिता करें, तो अभी हम उसे बिजली बना सकते हैं, हम उसे सड़कें बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस जा रहा है। तो जब ये अभी स्वच्छ भारत अभियान 2 जब शुरू हुआ था, तो उसका जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस जो चल रहा है, तो उसमें यही है कि जो ठोस कचरा है और जो गीला कचरा है, जो आपका तरल कचरा है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए कि ताकि उसका वेल्थ हम बना सके। और चूंकि अभी अर्बनाइजेशन हो रहा है और इतनी बड़े पैमाने पर है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में तो 90% शहरीकरण हो गया है और ये सब जगह होने वाला है, तो उसमें जो कचरा प्रबंधन है वो सबसे बड़ी चुनौती, जैसे सर अभी कह रहे थे। तो अगर कचरा प्रबंधन, जो अभी हमारे पास आंकड़े हैं कि 1,58,000 टन प्रतिदिन हमारे यहाँ ये कचरा पैदा होता है, जिसमें से हम 1,31,000 टन हम इसको ठिकाने लगाते हैं, लेकिन अभी भी करीबन 27,000 टन प्रतिदिन है जो अभी बच जाता है, तो उसको ठिकाने लगाने की चुनौती है। तो अभी जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है कि हम उसका बिजली बना सकते हैं, हम उसका दूसरे उपयोग कर सकते हैं, तो अगर हम उस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, तो आप सोचिए कि हम फिर जो हमारा कचरा है, जिसको हम कचरा कहते हैं, वो हो सकता है कि फिर हमारे वो सोना बन जाए।
0: बिल्कुल। तो अगर हमने अभी पहले शौचालय की बात करी और अब कचरा प्रबंधन की आपने उसके बारे में हमें बताया, तो अब हम हाइजीन पर आ जाते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, हाथ धोना हो चाहे सैनिटरी नैपकिन का सही निपटारा हो, तो ये अभी भी शर्म की बात समझी जाती है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे?
1: अभी तो जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस है उसमें ये अलग है कि आप सैनिटेशन जो पैड वगैरह है इनके लिए इनका प्रबंधन अलग से होना चाहिए। और स्वच्छता के साथ अगर वो सफाई केवल ऐसा नहीं कि आपको जो है शौचालय आपके घर में बना दिए उसकी स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य से है। और जैसे मैंने कहा कि अभी WHO के जो आंकड़े हैं कि लोगों की जो बीमारियां होती थी, उन बीमारियों से जो हमारी मृत्यु दर है
0: जी,
1: जो बच्चों की जो इन्फेंट्री जो डायरिया है, हैजा है, आंत्रशोध होता था, वो सारों में बचत हो रही है। और हम मोटा मोटा तौर पर लगाएं, अगर आप हॉस्पिटलों में चले जाते थे उस वक्त, आज नहीं, आज से 10 साल पहले, तो मोस्टली जो केसेस होते थे वो डायरिया के होते थे, हैजा के होते थे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल के अंदर हमने हैजा के केस सुने, पहले कितने केसेस होते थे। तो कम से कम ये स्वच्छ भारत अभियान की बहुत बड़ी सफलता है कि लोगों को हैजा नहीं हो रहा है, डायरिया नहीं हो रहा है।
2: ये सारे जो स्टडीज हैं ये कहता है कि इंडिया को कितना इससे फायदा हुआ है, बच्चों को काफी फायदा हुआ है, और एम्प्लॉयमेंट का जो बचत की बात हुआ उनका हुआ है, और ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन उसमें बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जो खुले में शौच होता है वो ग्राउंड वाटर का अफेक्ट करता है, फिर वो कुछ चीज के जरिए से, पानी के जरिए से इंसान के अंदर जाता है, उससे बहुत हेल्थ से फर्क पड़ा है। खाली इंडियन एजेंसीज नहीं, बाहर की एजेंसीज, बाहर की जो बड़े हेल्थ के मैगजीन्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज हैं, वो भी इसको एस्टेब्लिश किए हैं, तो बहुत तरह तरह के फायदा मिला है। गंदगी रहने की या हाइजीन का बात आपने कहा, अगर हैंड वॉश नहीं करें तो हैंड वॉश नहीं करने का इसका सारा जो इम्पैक्ट है कुछ टाइम के बाद होता है और इमीडिएटली नहीं दिखता है, तो वही तो खराब बात है।
0: हाथ जो है मुंह में लगाना, ये सब चीजें
2: हाइजीन का कॉन्सेप्ट, इसको इसलिए वॉश बोलते हैं। वॉश को एक सेक्टर माना जाता है, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वो साथ में देखा जाता है, तीनों चीज इंटरनेशनली नेशनली जहां प्रोग्राम होता है ये तीनों चीज एक साथ रहते हैं, क्योंकि तीनों चीज का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ है। तो हाइजीन का एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपने जैसे कहा कोविड के समय में आया, बिकॉज हाइजीन के बिना आप मर जाएंगे, आपको लगा कि, और लोगों को उस टाइम में यही तो विडंबना है कि लोग जो अच्छी चीज है वो डर कर ही जानते हैं, भाई ये नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इसी तरह का अगर इनको लोगों को इस तरह का, इसको ट्रिगर्स बोलते हैं, बिहेवियर चेंज के बाद आपने कहा लोगों का, उसमें ट्रिगर्स क्या है, माने कभी आपका जागरूकता किस ट्रिगर से, कभी डर कर करते हैं, कभी बोलते हैं कि नहीं प्यार से, जो भाई बहन का भाई, जब आप जानते हैं शौचालय का जो मूवमेंट चला था पहला 5 साल 14 से 19 तक, उसमें बहुत सारे रक्षाबंधन में भाई बहनों को टॉयलेट्स दिए हैं गिफ्ट में, और शादियों में जैसे गिफ्ट देते हैं तो उसमें भी टॉयलेट्स दिए,

0: तो माँ की बेटे के लिए जो प्यार है बच्चों को रखने के लिए, बच्चे के आदर करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, तो उसका ही निशान है कि उसका उसका जो सैनिटेशन एस्पेक्ट है उसको ठीक से ख्याल रखा जाए। ये सब चीजों को मानना पड़े। तो बिहेवियर जो चीज है बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि सस्टेन करना है अगर आगे, इसमें बिहेवियर को तो मजबूत करना पड़ेगा। खाली एक्सेस से इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से नहीं होगा। इसलिए स्वच्छ भारत मूवमेंट को लार्जेस्ट सैनिटेशन मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लार्जेस्ट इन बिहेवियर चेंज मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है।
1: तो सर 2047 तक विकसित भारत के लिए स्वच्छता का अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए?
0: कंप्लीट, मतलब मुझे लग रहा है कि स्पॉटलेस कंट्री होना चाहिए। स्पॉटलेस, जैसे आप जाते हैं ना, आप विदेश में क्या जाते हैं, जब कोई आइकॉनिक प्लेस जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, बड़े बड़े, अरे क्या साफ सफाई है बोलते हैं ना, ऐसे भी इंडिया में हर शहर, हर जगह जहां फुटफॉल है, टूरिस्ट सेंटर हो, पिलग्रिमेज सेंटर हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, जहां पब्लिक एरिया हो, पार्क हो, रेलवे स्टेशन हो, लोग जैसे उनको लगे कि ये सबसे साफ साफ जगह है, इंसान कहां भी बैठ सकता है, कहां भी खड़ा हो सकता है, कहां भी बदबू नहीं आ रहा है। जो बोलते हैं अर्थ, एयर, वाटर, तीनों चीज जो है हमारा साथ जुड़ा हुआ है, ये तीनों चीज ही कंप्लीटली साफ रहे, ये मेरा 2047 को मैं जब विकसित भारत देखूंगा, मैं जानूंगा कि मेरा देश की हर मिट्टी, हर हवा, हर पानी साफ हो, हर शहर साफ हो, संपूर्ण तरह से, एक है ना कंप्लीट क्लीनलीनेस, एक है स्वच्छ, एक है कंप्लीट क्लीनलीनेस, और पूरा संपूर्ण तरह से स्वच्छ हो हर गाँव, हर शहर।
1: और रोशन जी, स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सफाई जो कर्मी हैं उनकी भूमिका बहुत अहम होती है, उनको यूनिफॉर्म मिलती है, पीपी किट मिलती है, उनके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसे लगता है कि देश उसे देख रहा है, तो क्या स्वच्छता से सम्मान तक का सफर यही है?
2: असल में जो सफाई कर्मचारी हमने अपनी आंखों से देखे हैं, और चूंकि जब हम कवर करने जाते हैं तो हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं कि सफाई कर्मचारी सीवर में जाते हैं तो उनके गैस के कारण उनकी मौत हो जाती
1: है। ये सबसे बड़ी चुनौती थी, बहुत लोगों की मौतें हो जाती,
2: बहुत मौतें हुई, और उसमें फिर सुधार हुआ कि उनको पीपी किट मिलना चाहिए, और वहां अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है उसमें, गवर्नमेंट ने भी उसमें नोटिफिकेशन कर दिया है कि कोई भी इंसान गटर के अंदर नहीं जाएगा, मशीन से सफाई होगी। और देखिये मेंटेलिटी बदलने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने उनको सफाई मित्र कहा कि आप उनको सफाई कर्मचारी मत कहिए, क्योंकि असल में वो आपका कचरा उठा रहे हैं, वो आपके सब जो काम आपको करना चाहिए आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो आपका बदले आपका काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी तो बहुत बड़ी भूमिका है, तो उनको तो जितना सम्मान मिलना चाहिए, जितनी उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जितने उनके बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, तो उतना मुझे लगता है कमी कम होगा। एक बात और जो अभी आपने कही कि भय जरूरी है, जैसे अभी कोविड में भय था तो लोगों ने अपने हाथ पांव धोना और सैनिटाइज करना जरूरी था, एक भय और दिखाना जरूरी है कि अभी जैसे हमारी सरकार ने कर रखा है कि अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर अगर थूकता है तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना, लेकिन असल में हो नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पान खाने वाले लोग बहुत हैं, और जितना सरकार साफ करे, लोग साफ करें, कोई ना कोई पान की पीक मारकर उसे गंदा कर देता है, तो यहाँ मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ दंड और डर, दोनों भय भी जरूरी है और दंड भी जरूरी है, तो मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं जो 2047 तक पूरा हमारा भारत बहुत सुंदर दिखे और हमारे गांव बहुत खूबसूरत दिखे, जितने हमारे जो मॉन्यूमेंट है, हमारे जो टूरिस्ट स्थल है, उसमें जो सरकार ने भी पीपीपी मॉडल शुरू कर दिया है कि वो कोई भी कंपनी आकर सीएसआर मॉडल के तहत किसी भी, जैसे लाल किले को, ताजमहल को, किसी को भी वो एडॉप्ट कर ले, उसकी साफ सफाई का अपने हाथ में ले ले।
0: काम तो बहुत हो रहा है लेकिन बहुत जल्दी और ज्यादा होने की जरूरत है
1: जी।
0: और लेकिन ये हमेशा डिबेट रहेगा कि ये पनिशेबल किया जाना चाहिए एजुकेशनली, जनरली हमारे डेमोक्रेटिक इथर्स के साथ ये सारे चीज, क्योंकि इतना 1.5 बिलियन पॉपुलेशन और इसमें कौन कितना करता है, तो इस तरह का जो लोकल गवर्नमेंट का जो अधिकार के अंदर कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली तो ये फिर अपने आप में रेस्पॉन्ड करने वाले जो है ना, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, हम तो कुछ सोचे ना भाई, खाली कंप्लेन करने से थोड़ी होगा, हम कुछ सोचे, प्रदूषण के बारे में कंप्लेन करेंगे, कचरा के बारे में कंप्लेन करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्या कर रहा है, हम सोसाइटी के लिए क्या कर, वो है एक जिम्मेवारी की बात है, वो बहुत जरूरी है स्वच्छ भारत मिशन के कॉन्टेक्स्ट में।
1: बिल्कुल लक्ष्य जी, आपने बहुत अच्छी चीज भी बताई है, तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि भारत को जीरो वेस्ट नेशन बनाने के लिए क्या मंत्र होना चाहिए?
0: जीरो वेस्ट नेशन एक तो है कि बहुत एक गांधीयन फिलोसफी था, वो बहुत अभी भी सरकार की पॉलिसी के तहत है, RRR, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस जो है गांधीवादी है, भाई आप कंजम्पशन को कम करिए ना, लोगों का कंजम्पशन का माहौल बढ़ रहा है, लेकिन रीयूज रिसाइकल जो है, ये दोनों, खासकर रिसाइकल, रीयूज का भी एक लिमिटेशन है, लेकिन रिसाइकल जो है सोने, कुछ भी चीजें, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हुआ, सारी चीज को रिसाइकल करने का मैं देख रहा हूँ। वेस्ट कम से कम जेनरेट करें, आपने जीरो वेस्ट कंट्री के बारे में बताया, कम से कम जेनरेट करें, हमारा घर, हमारा दफ्तर, हमारा जगह से वेस्ट कम निकले, और जो निकले उसका निपटान होने का प्रिंसिपल लेके, स्ट्रैटेजी लेके, टेक्नोलॉजी लेके, रिसोर्स लेके, क्यों, इसका निपटान तो जरूरी होगा, जितना निकले कम निकले।

0: जब निकले निपटान हो, यही होने से जीरो वेस्ट होगा।
1: तो अंत में हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे आम नागरिकों के लिए कुछ संदेश अगर देना चाहें तो।
2: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी ई कॉमर्स के जमाने में इतना ज्यादा वेस्ट घर पर आ रहा है, चाहे वो थैली के जरिए आ रहा है, चाहे प्लास्टिक के जरिए आ रहा है, उसका कम से कम इस्तेमाल हो। और जितने हमारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनको भी निर्देश दिया जाए कि आप जो अत्यधिक प्लास्टिक भेज रहे हैं, पैकेजिंग भेज रहे हैं, उसको कम से कम किया जाए।
1: बिल्कुल, क्योंकि बेहतर साफ सफाई से ही भारत के सिर्फ गांव के लिए नहीं मुझे लगता अक्षय जी, बल्कि शहरों को भी आदर्श बनाया जा सकता है।
0: मेरा इतना ही मैसेज रहेगा कि आप घर के अंदर साफ सफाई का काम अपने आप करें और अपना घर के आसपास की साफ सफाई अपने आप करें। और दूसरी बात है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल कम से कम करें या नहीं करें, और घर के कूड़े का जरूर सेग्रीगेट करें खुद।
1: तो श्रोताओं, निर्मल गुजरात ने कैसे राह दिखाई आज हमने जाना, स्वच्छ भारत ने उसे कैसे जन आंदोलन बनाया, और सूरत जैसे शहरों ने साबित किया कि अगर जन सेवा की नियत हो तो कचरे से भी कंचन बनता है। स्वच्छ भारत सिर्फ सड़कों की सफाई नहीं, हर नागरिक के सम्मान की कहानी है। इसी के साथ जन सेवा से देश सेवा की आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप स्टूडियो में रहे।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: तो फरहत नाज को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा की 7वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता फरहत नाज। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: ಇದುವರೆಗೂ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂತು.

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उन सब विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
1: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है, उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जन सेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
2: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
3: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क

0: এইডিপি অপ্রেন্টিসশিপ এম্বেডেড ডিগ্রি প্রোগ্রাম নাসকম ফিউচার স্কিল কোর্সেরা জেসে কার্যক্রম কো আপনায়ে হ্যাঁ ইন্টার্নশিপ বহুত অচ্ছি তরিকে সে উড়িষ্যা মে হো রা
1: রাষ্ট্রীয় শিক্ষা নীতি কা প্রভাবী কার্যান্বয়ন কেবল পাঠ্যক্রম মে বদলাব তক সীমিত নহি হ্যায় বল্কি ইসকা ব্যাপক উদ্দেশ্য বিদ্যার্থিও কো জ্ঞান কৌশল অর অবসরো সে সশক্ত বনানা হ্যায় ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश्री सिंह राठौर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
4: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालु के विदेश मंत्री शामिल हुए। टोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
5: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10-15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22-23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35-40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
2: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने

0: मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिणी तट को पार कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कई स्थानों पर जल भराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है।
2: कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट को पार करने के बाद गहरा डिप्रेशन जमीन के अंदर की ओर बढ़ गया है और धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उड़ीसा में इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। आज कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कलाहंडी, नुआपड़ा, बलांगीर और बरगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश और कल व परसों बहुत भारी बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान, बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि भूस्खलन के खतरे के कारण 157 का कलिंगा घाट वाला हिस्सा बंद कर दिया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब एशियाई खेलों की आज की अपडेट के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबिना देवी नाओरेम ने वुशू में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया योग से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने 6:13.25 का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए के मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी पक्का हो गया है। अब पदक तालिका में भारत के कुल पदक की संख्या 15 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। कहा, सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा, भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जल्दी सूख जाती है।
1: लेकिन एक नई समस्या सोचा, स्याही को निब से निकालने के बजाय क्यों ना एक छोटी सी गेंद के सहारे कागज पर पहुंचाएं। और उन्होंने एक बहुत ही छोटी गेंद बनाई।
0: जी, कल्पना कीजिए श्रोताओं, जब गेंद कागज पर घूमती तो वह स्याही को अपने साथ लेकर आती और कागज पर छोड़ देती।
1: जी,
0: यानी गेंद घूमती जाती और उसके आगे आगे शब्द बनते जाते।
1: जी,
0: यही तो है नवाचार।
1: कलम की अगली नोक या पॉइंट पर एक बेहद छोटी गेंद। इस छोटी गेंद यानी बॉल के कारण नाम पड़ा बॉल पॉइंट पेन। बायरो और उनके भाई जॉर्ज बायरो ने सन 1938 में अपने बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया।
0: और श्रोता मित्रों, उसके बाद जो हुआ ना वो इतिहास है। स्कूल के बच्चों से लेकर बड़े अधिकारी तक सबके हाथ में अब बॉल पेन दिखने लगी।
1: जी,
0: इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान था। ढक्कन खोलिए, कागज पर रखिए और लिखना शुरू कर दी।
1: बिल्कुल,
0: न स्याही की दवात चाहिए और न निब को बार बार स्याही में डुबोने की झंझट।
1: जी, आज बॉल पेन के अंदर एक पतली सी स्याही की एक ट्यूब होती है और सबसे आगे एक बहुत छोटी गेंद। जब हम लिखते हैं तो वो नन्ही गेंद घूमती है और स्याही को नियंत्रित मात्रा में कागज पर पहुंचा देती है। वाह, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी।
0: जी, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी। तो साथियों, याद रखिएगा, आज जब हम परीक्षा देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, नोट्स लिखते हैं और फॉर्म भरते हैं, उस समय हमारी उंगलियों के बीच चुपचाप चलती है वही तकनीक जिसे बायरो ने लगभग एक सदी पहले विकसित किया था।
1: तो ये थी हमारी आज की जानकारी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा प्रश्न है कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वे किस देश के थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वो किस देश के थे। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है समझदारी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि समझदारी इसी में है कि यदि हम एक दूसरे के साथ सहयोग और भाईचारे की भावना से रहें तो इसी में सबकी

0: भलाई है।
1: समझदारी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
3: मश्क।
2: होशियार,
3: समझदार,
2: पेंसिल तराश,
3: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
3: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी।
4: झटपट झटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाए हम अक्षर।

0: उन्हें दुनिया में सबसे अधिक आविष्कार करने और उनका पेटेंट लेने का श्रेय प्राप्त है।
1: उन्होंने लगभग 1300 आविष्कार किए। जरा सोचिए, सोचिए, सोचिए।
0: साथियों, यदि आपके मन में थॉमस एडिसन का नाम आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
1: जी हाँ, वो महान आविष्कारक और वैज्ञानिक हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। उन्हें मुख्य रूप से बिजली के बल्ब, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और चलचित्र के आविष्कार के लिए जाना जाता है।
0: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की 7वीं संतान थे।
1: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
0: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा,
2: अपनी माँ को ये चिट्ठी दे देना।
0: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
3: माँ, ये चिट्ठी।
0: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
1: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
3: माँ, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
1: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
3: अच्छा,
1: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
3: अच्छा,
1: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे। साथियों, उनकी माँ स्वयं एक शिक्षिका थी और वो जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंकगणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी।
0: उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़े होने पर काम करना शुरू किया और परिवार की सहायता भी करने लगे। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अखबार और चॉकलेट बेचने का काम किया।
1: रेल के डिब्बे में ही उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
0: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा। उनकी मां उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें दे दी और प्रोत्साहित कर दी कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी मां के कारण ही उत्पन्न हुई।
1: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
0: ओह, मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा दे।

0: करता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
1: साथियों, उनकी स्मृति में थॉमस एडिसन नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम बनाया गया है। इस विशाल म्यूजियम की तीसरी मंजिल में उन किताबों का विशाल संग्रह है जो किताबें थॉमस एडिसन ने अपने जीवन काल में पढ़ी थीं। थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था,
0: मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थीं और मुझ पर विश्वास करती थीं।
1: थॉमस एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला अपने घर पर ही उस समय बनाई थी जब वो मात्र 10 वर्ष के थे। कहते हैं कि वो बेहद परिश्रमी थे और अक्सर अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते करते वो लेबोरेटरी की कुर्सी या टेबल पर ही सो जाया करते थे। समय बीता, इस बीच उनकी माँ का देहांत हो गया था। बहुत वर्ष बीते और एडिसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफलता की बुलंदियों को लांघते हुए विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक बन चुके थे।
0: उनके द्वारा किए गए आविष्कारों में मुख्य रूप से कार्बन माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, चलचित्र, ग्रामोफोन, विद्युत वोट रिकॉर्डर, विद्युत वितरण प्रणाली और बिजली का बल्ब है। बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
1: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले लेकिन कुछ ही सेकंड्स या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
0: अथक परिश्रम और सतत प्रयोगों के बाद अंत में 1889 में उन्हें बिजली का बल्ब बनाने में सफलता हाथ लगी। पहला बिजली का सफल बल्ब लगभग 40 घंटों तक जला। 1880 में उन्होंने इसमें और अधिक सुधार किया और अब ये महीनों तक लगातार जल सकता था।
1: जब बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ तो सारे अमेरिका में तहलका मच गया। लोगों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। दूर दूर से लोग इस बल्ब को देखने के लिए आते थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन ने इस महान आविष्कार के लिए उनका विशेष रूप से अभिनंदन किया और उनसे निवेदन किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस को बिजली के बल्बों से जगमगा दे।
0: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
1: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
0: लगभग 10,000 बार।
1: 10,000 बार?
0: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
1: अच्छा,
0: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
1: अरे वाह।
0: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
1: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
0: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे 2 लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
1: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
0: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल

0: में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
1: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोलकर कि तुम जीनियस हो, अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
0: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.3 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಯೋರ್ಸ್.
1: ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಮಯ ಆಗಿದೆ 3:30:04. ಈಗ ಕೇಳಿ 2026 ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ.
2: 26 ಐಜಿ ನಗೋಯಾ.
3: ಹಲೋ ಅನ್ ವೆರಿ ವಾರ್ಮ್ आकाशवाणी में हूँ दोस्तों साक्षी मांडवाल, और इस वक्त मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है शाबाब अनवर, और हम लेकर आ गए आपके लिए ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स. घड़ी में बज रहे इस वक्त दोपहर के 3:30 बजे, और इस अपडेट की शुरुआत मैं एक निराशाजनक खबर के साथ करने वाली हूँ दोस्तों, क्योंकि विमेन्स वर्ल्ड फाइनल के अंदर भारत की लोन रिप्रेजेंटेशन जो की थी प्रणति नायक, उनसे हमारी सारी उम्मीदें अब समाप्त हो चुकी है. जी हाँ, प्रणति नायक मेडल in the women's world final are over. India's lone gymnast scored 13.100 after her two attempts, but stronger performances from Yu Seo Jong, Eun Chung Ok and Du Seo pushed her down the standings to the 6th position. Uzbekistan's 51-year-old legend Oksana Chusovitina then scored 13.199 to move ahead of Pranati as well. So, is khabar ke saath main yahan se ab agli update ki or ishara kar rukh karungi, और उसके पास हम चलेंगे शबाब के पास.
4: जी, आज बॉक्सिंग की मुक्केबाजी का जो मुकाबला है जिसमें भारत की वो समाप्त हो चुका है आज के दिन, और कहा जाए कि आज का दिन जो भारतीय मुक्केबाजी में दिल तोड़ने वाला रहा है एक तरह से कहा जाए तो. सुमित, जैसा कि हम आपको अपडेट दे चुके हैं पहले, एक ऐसे समय पर घायल होकर बाहर हो गए जब वो जीत के करीब आते हुए नजर आ रहे थे. उसके बाद महिला वर्ग में अगर देखा जाए तो भारत की साक्षी चौधरी से काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि उन्होंने शुरुआती राउंड में ओलंपिक पदक विजेता को हराया था, कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक विजेता है, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, अच्छी शुरुआत भी उन्होंने की थी, लेकिन वो अपने और 2-3 से मुकाबला हार गई, और जाते जाते एक थोड़ी सी उम्मीद और आशा जरूर दे गई हैं वो अपने खेल से नहीं बल्कि किस्मत से. परवीन हुडा को वाकओवर मिल गया था चूंकि राउंड शुरू होने से पहले ही. अगर देखा जाए तो तजाकिस्तान की मलिका नोजिशोवा को थोड़ी सी परेशानी हो गई थी जिसके कारण उन्होंने वॉकओवर दे दिया, जिसके कारण वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई. तो एक उम्मीद बनी है कि क्वार्टर

0: फाइनल में अब उन्हें हम खेलते हुए यानी कि परवीन हुडा को देख सकते हैं। तो साक्षी महाराज, साक्षी चौधरी माफ कीजिएगा की बात अगर की जाए तो मुक्केबाजी के महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में राउंड ऑफ 16 में हार कर बाहर हो गई। उन्हें कजाकिस्तान के मुक्केबाज आलुआ बालिकम बोवा ने 3-2 से पराजित किया। तो ये मुक्केबाजी में आज तक का सफर था भारत का।
1: जी, और बॉक्सिंग के अंदर एक स्लाइट करेक्शन करके आपके पास वापस आती हूं कि वेमेन 65 केजी प्रिलिमिनरी राउंड ऑफ 16 में भारत की परवीन को वॉकओवर जरूर मिला, लेकिन वो तजाकिस्तान की मलिका नोजीमोवा थी, जिसकी वजह से हमारी भारत की बॉक्सर परवीन ने अपनी एंट्री अब क्वार्टर फाइनल्स के अंदर सिक्योर कर ली है। गुड न्यूज कमिंग ओवर देयर थैंकफुली इन सम फॉर्म फॉर द इंडियंस। लेकिन हम यहां से आगे बढ़ेंगे। अगली खबर में आपके लिए दोस्तों लेके आ रही हूं स्क्वाश की दुनिया में, जहां जोशना चिनप्पा एंड वी संतिल कुमार सिक्योर अ हार्ट 2-0 victory over their own fellow Indians Suraj Chand and Shamina Riaz to advance to the mixed doubles quarterfinals. Dusri taraf agar baat kare to Anahat Singh also won her women's singles round of 16 3-0 to qualify, defeating her opponent 11-4, 11-5, 11-7. India also made a bright start in squash in men's singles round of 16 with Abhay Singh defeating Sri Lanka's Ravindu Laksari to seal the match 3-0 in his favour. On the adjacent court, we also saw Veer Chotrani facing a tougher battle against Malaysia's Sanjay Jiva. The final score of the match was 3-2 in favour of India's Veer Chotrani, the score line being 11-9, 8-11, 11-6, 15-11, 11-6. And finally, Tanvi Khanna pulled off a comeback win over Singapore's Oh Yong Wai Yan in the women's singles round of 16. After dropping the opening game 5-11, Tanvi responded by winning the next three 11-4, 11-5 and 13-11 to seal a 3-1 victory. So happy days, smiling days for now for the Indians in the world of squash, Shabab.
0: Yeah, बिल्कुल। और लेकिन सब अभी तक आज का जो सबसे ज्यादा जो खुशखबरी दी है वो निश्चित रूप से हम फिर दोहराना चाहेंगे, जो हर अपडेट में हम उनका नाम ले रहे हैं, और वो है रोशबीना देवी। यानी वुशु में आज का दिन बहुत अच्छा रहा भारत के लिए। उम्मीद तो हालांकि गोल्ड मेडल की जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। महिलाओं के 60 किलोग्राम जो सांडा इवेंट होता है उसके फाइनल में चीन की झांग शिया आयुष 0-2 से हालांकि वो हार गई। लेकिन एक खास बात यह है कि रोशबीना ने एशियाड में लगातार तीसरा मेडल ये जीता है, ये महत्वपूर्ण है, और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला वुशु खिलाड़ी बनी।
1: जी, एंड नाउ ब्रिंगिंग यू सम न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फेंसिंग, इन व्हिच इन वुमेन्स सेबर इंडिविजुअल श्रेया गुप्ता रिसीव्ड अ बाय इन द राउंड ऑफ 32 एंड लेटर लॉस 6-15 वर्सेस युआन हायुंग ऑफ कोरिया इन द टेबल ऑफ 16 टू फिनिश 11th ओवरऑल। वहीं अगर कबड्डी की बात कर ले तो एज वाज एक्सपेक्टेड द चाइनीज ताइपे टीम वाज नो मैच फॉर इंडिया इन द फाइनल ग्रुप ए गेम, एंड थेरबाय इंडिया सिक्योर्ड अ 37-21 ईजी विन टू क्वालिफाई फॉर द सेमी फाइनल्स एज द टॉप रैंक टीम। और इसके साथ ही कबड्डी में भारत ने अपने लिए एक मेडल तो तय कर ही दिया है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए और देश के लिए भी। दोस्तों, वी आर नाउ गारंटीड अ मेडल इन मेंस कबड्डी। शबाब
0: जी, हां बिल्कुल
1: जी, ओके। एंड इसके साथ ही आई विल गिव अ क्विक रैप अप बिफोर वी से गुड बाय ऑन द मेडल टैली। आल्सो मेडल टेबल पर भारत की पोजीशन अभी 14th है। कुल मिलाकर भारत के पास दोस्तों इसमें 15 मेडल्स हैं, जिसमें से एक गोल्ड है, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। उम्मीद करते हैं कि भारत की स्टैंडिंग इंप्रूव करेगी। फॉर नाउ इट्स शबाब एंड मी साक्षी सेइंग गुड बाय टू ऑल आवर लिसनर्स। वी विल जॉइन बैक अगेन एट 4:30 इन द इवनिंग विद ऑल द अपडेट्स फ्रॉम द एशियन गेम्स 2026।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: Attention, national recognition for your hard work, for those making outstanding contributions to the animal husbandry and dairy sector and embracing innovative practices. The Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India, invites nominations for the prestigious National Gopal Ratna Awards 2026. The awards recognize excellence in three categories: Best Dairy Farmer, Best Dairy Cooperative Society, Best Artificial Insemination Technician. And there is more. Special provisions have been made for the Northeastern region and Himalayan states. Nomination period 10th August to 10th September 2026. So what are you waiting for? Apply today at www.awards.gov.in or visit your nearest CSC center to submit your nomination. National Gopal Ratna Awards 2026, issued in public interest by the Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India.
4: LIC ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಮೈ ಎಲ್ಐಸಿ, ಎಲ್ಐಸಿಯ ನ್ಯೂ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಪ್.
5: ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್.
4: ಪಾಲಿಸಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ರಿವೈವಲ್ ಹಾಗೂ ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಇ ಕೆವೈಸಿ
5: ಈಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮೈ ಎಲ್ಐಸಿ. ಎಲ್ಐಸಿ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.
6: ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.

प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। वहीं पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस घंटे के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास एपिसोड में आपका सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो। कारगिल की बुलंदियों पर लिखी गई थी एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया आज भी भारत की विजयी शौर्य गाथा के रूप में याद करती है। हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस, वीरता, कर्तव्य, निष्ठा और उनके अमूल्य बलिदान की कहानी। संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे खास मेहमान कारगिल युद्ध के एक ऐसे योद्धा, एक डैरिंग सोल्जर हैं जिन्होंने 25 साल तक इंडियन आर्मी आर्टिलरी में अपनी सेवाएं दी। वो हेलीकॉप्टर पायलट रहे और अनगिनत मिशंस के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, देश और साथी जवानों की सुरक्षा में जान की बाजी लगा दी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिप्यूटी प्लानिंग ऑफिसर के रूप में इंटरनेशनल कोऑपरेशन संभाला। ऑफसेट पॉलिसी 2006 के रचनाकार रहे। उन्होंने नेक्स्टर फ्रांस और राइन मेटल जर्मनी के हेड के रूप में भारत को रिप्रेजेंट किया और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के हमारे खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जय हिंद। थैंक यू ऑल द लिसनर्स। थैंक यू शाहिद फॉर हैविंग मी ओवर फॉर दिस ब्यूटिफुल शो टुडे।
0: थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: तो सर, हम आज का शो शुरू करेंगे आपके साथ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा। इतनी सारी आपकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, जो आपके जो ऑनर्स हैं उनको मैं जब पढ़ रहा था, तो आपकी शुरुआत ही, आप बचपन से बहुत डिसिप्लिन थे, बहुत ही हम्बल और बहुत ही ऑनेस्ट चाइल्डहुड आपका रहा। आपके पिता एक डॉक्टर और आपकी बहन जो है नेशनल एथलीट्स और आपके भाई भी जो है स्पोर्ट्स और स्टडीज में एक्सेल कर चुके हैं, तो किस तरीके का बचपन था, कैसी हुई शुरुआत, फिर आगे बढ़ेंगे हम।
1: मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप ने हमको बहुत मेहनत की हम बच्चों के ऊपर, बिल्कुल ऑनेस्ट शुरू से लाइफ के अंदर ऑनेस्ट रहिए और बिल्कुल बिल्कुल हर चीज़ सीधी लाइन में चलना हमारे माँ बाप ने सिखाया था। तो हमारी बहनों के ऊपर बहुत मेहनत की स्पोर्ट्स के ऊपर। हम भाइयों को उन्होंने बोला, उस टाइम स्पोर्ट्स में ज़्यादा वो नहीं था चांसेस, तो उन्होंने बोला आप पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर हम दोनों भाइयों ने पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, तो हम चारों बहन भाई ने अपने अपने फील्ड में जहाँ भी काम किया काफ़ी एक्सेल किया लाइफ के अंदर, जो हम कर सकते थे। माँ बाप का बहुत बड़ा सहयोग था उसमें।
0: जी सर, हम बात करें कि जैसे आपकी शुरुआत हुई, तो क्या पहले से ही कुछ प्लान था बचपन में, लड़कपन में कुछ जोश, कोई जज्बा था कि इंडियन आर्मी मुझे ज्वाइन करनी है, और क्या ये कुछ खास एक जज्बा आपके दिल में था कि हेलीकॉप्टर पायलट ही बनना है, कैसे में ज्वाइन किया?
1: ऐसा था, मैंने ना बीकॉम किया था, मैंने ग्रेजुएशन किया था, मेरे ब्रदर इन लॉ आर्मी में थे, मेरे अंकल, हमारे और रिलेटिव बहुत आर्मी में थे, और जब भी मैं उनके यहाँ जाता था तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट वहाँ का, और यूनिफॉर्म्स में देखना सोल्जर्स ने आना, जैसे सोल्जर्स ने आके सल्यूट करना, कंडक्ट सोल्जर्स का, ऑफिसर्स का लेडीज़ की तरफ, या जैसे बहुत बहुत ही जैसे होना चाहिए कि बिल्कुल परफेक्ट होता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये एनवायरनमेंट विज़ावी आउटसाइड जो मैं देखता था, जैसे जो मुझे किसी, तभी तो कॉलेज में था तो थोड़ा थोड़ी समझ कम थी, पर फिर मैंने सोचा मुझे आर्मी ही ज्वाइन कर रही है। फिर मैंने आर्मी के दौरान हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी जब हम ज्वाइन करते हैं, मैंने कॉलेज के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया, तो वहाँ पर हमसे चॉइस ऑफ आर्म पूछा जाता है, तो मैंने आर्टिलरी इसलिए चुना कि मैं चाहता था कि आगे जाके मैं फ्लाइंग कर सकूँ। फ्लाइंग मेरा संभव पैशन था और सिर्फ आर्टिलरी की वजह से ही मैं फ्लाइंग कर सकता था, इसलिए मैंने आर्टिलरी चुना।
0: राइट सर, तो ये बड़ा जोशीला ये जज्बा था, और मतलब हमें अभी भी सुनकर के लगता है कि कितना ही एक्साइटिंग सा ये रहा होगा और रहता है, तो क्या ये उतना ही एक्साइटिंग होता है या बहुत ही खतरनाक भी होता है, और जिस तरीके के जब हमें मिशंस करने पड़ते हैं?
1: फ्लाइंग पे आने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, फ्लाइंग पे आने से पहले मैं और दो यूनिट्स में मैंने काम किया, 92 मीडियम रेजिमेंट में, 217 मीडियम रेजिमेंट में, उसमें मुझे मौका मिला काफी

0: इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज करने में, चाहे वो पंजाब प्रॉब्लम समझ लीजिए, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम समझ लीजिए, तो हमने ग्राउंड वर्क पे बहुत ज्यादा, मतलब जो मिलिटेंसी के साथ बहुत इन यूनिट्स ने काम किया, तो हम वेरी प्राउड कि मैं ऐसी यूनिट्स के साथ एसोसिएटेड था
1: जी।
0: फिर उसके बाद फिर मैं जब फ्लाइंग कैरियर में आया, मैं पायलट बना, मुझे विंग्स मिले फ्लाइंग में। फिर हमने 9 साल फ्लाइंग किया, तो उस 9 साल के अंदर हम अलग अलग स्टेशन पे, आगरा, नासिक, कई जगह पे फ्लाइंग करता रहा मैं। बाद में मेरे को 2 साल मौका मिला सियाचिन ग्लेशियर में फ्लाइंग करने का
1: जी।
0: सियाचिन ग्लेशियर का फ्लाइंग का मतलब है ये मोस्ट हॉस्पिटेबल टेरेन इन द वर्ल्ड, सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ टेम्परेचर होता है -50 से -60, एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात करो तो वहाँ की फ्लाइंग, मतलब हमारे हेलीकॉप्टर भी जो थे वो चीता हेलीकॉप्टर थे
1: जी।
0: जो हमारे कुछ शुरू शुरू में एक्सीडेंट भी थे, हमारे से पहले एक्सीडेंट्स भी होते, तो फ्रेंच वालों को बुलाया गया था कि यहाँ पर आपके एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, कहते हैं जो आप हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ा रहे हो इस जगह के लिए नहीं बना है ये। पर हमारी आर्मी में इतना जोश था, इतना जज्बा था कि चीता हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के दोनों उड़ा रहे थे, और हमने काम किया 2 साल। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी सेटिस्फाइंग कैरियर नहीं महसूस किया टिल आई केम टू द कारगिल वॉर। कारगिल वॉर मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था, बट जो मेरी फ्लाइंग सियाचिन ग्लेशियर में थी, मेरे को लगता था मैंने जिंदगी में कोई बहुत अच्छा काम किया है
1: जी। सर हम आगे बढ़ते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हम इन चीज़ों पर और ज़्यादा आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही एक्साइटिंग था ये आपका जो फ्लाइंग करियर था, और जो हेलीकॉप्टर उड़ाना, और जिस तरीके के जो खतरनाक एरियाज में, और इतने कम टेम्परेचर, इतनी ऊंची पहाड़ियों पर, तो वो सब चीज़ें, और जो करियर आपका शुरू हुआ बड़ा ही जोश और जज्बे के साथ शुरू हुआ था। तो जैसा कि आपने बताया कि वो बचपन में जब आप देखते थे तो वही चीज़ मोटिवेटिंग बनी, या और भी कोई चीज़ थी जो आप, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं अपने आर्मी ऑफिसर्स को देखते हैं, बैटल्स देखते हैं, तो वो जोश, वो जज्बा, वो हम उस पर आएंगे, आपसे बात करेंगे। तो पहले हम बता दें अपने लिसनर्स को कि आप भी आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी से सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं हमें, नंबर है 9868107070। और आप हमें सुन रहे हैं 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर, दिल्ली एनसीआर में, और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर अलग अलग हिस्सों में देश के। और साथ ही हमारी मोबाइल ऐप है न्यूज़ ऑन AIR, जिस पर आप हमें सुन सकते हैं अपनी मोबाइल ऐप पर।

0: 100.6 एशिया नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स, और आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल बचपन से ही शौक रहा अनिल नंदा जी को कि वो हेलीकॉप्टर पायलट बने, और जिस तरह के टेरेन में इनको मौका मिला काम करने का वो अपने आप में अद्भुत है, अनबिलीवेबल है। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका हमारे इस शो में।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: सर हम बात करना चाहते हैं कि ये जो आपने चूज किया, ये जोश और जज्बे से भरा एक करियर था हेलीकॉप्टर पायलट जब आप बने, और आपने सियाचिन ग्लेशियर जैसी एक ये कैसे रहा, मतलब शुरुआत तो जाहिर है जब आप शुरू कर रहे थे तो डर भी लगा या सब जोश था सब कुछ?
1: ऐसा है, जब हम लोगों ने फ्लाइंग कैरियर शुरू किया था
0: जी,
1: तो हम लोग थोड़ा टफ कंपटीशन से हम लोग को सिलेक्ट होते थे हमारे आर्टिलरी में, तो पायलट्स करीब होते थे, तो जो भी हम फ्लाइंग के लिए जाते थे पहले 6 महीने हम लोग फिक्स विंग फ्लाइंग करते हैं। वो ऐसा टाइम होता है जिसमें आदमी को फ्लाइंग से अगर डर लगता है तो वो ग्राउंड हो जाता है, उसको वापस भेज देते हैं। तो फाइनली हम लोग 28 में से 18 लोग बच गए थे जो हेलीकॉप्टर फाइनली हमने कोर्स पूरा किया था। तो जिन जिन के दिमाग में वो डर था वो पीछे बट उनको उन्होंने वापस यूनिट पे भेज दिया था।
0: सर तो ऐसा ये क्राइटेरिया होता है कि मतलब ट्रेनिंग के बाद भी ये मौका दिया जाता है कि जो फ्लाइंग कर रहे हैं एक्चुअल फ्लाइंग उसके बाद भी उनको वापस बुलाया जा सकता है?
1: नहीं, जो एक बार ग्राउंडेड हो गया वो कभी दोबारा फ्लाइंग में नहीं आ सकता।
0: अच्छा,
1: एक बार ग्राउंड हो गया, जैसे मैंने बताया 28 में से हम लोग फाइनली 18 जो ऑफिस थे जो फाइनली जिनको विंग्स मिला था जो पायलट बने थे, तो 18 बाकी 10 को वापस यूनिट आर्मी में बाकी काम के लिए भेज दिया गया।
0: तो
1: पायलट बन गए तो उसके बाद वो लोग वापस नहीं आ सकते।
0: सर आपने जैसे बताया कि सियाचिन में जो टेम्परेचर होता है वो -50 to 60 degrees Celsius, सर वो अनबिलीवेबल लगता है हमें सुनकर के, आपको कैसा लगता था?
1: ऐसा है, ये टेम्परेचर -50 to 60, मैंने इसलिए बोला ये एक्सट्रीम टेम्परेचर जो -50 60 पे जाता है, -10 भी हो सकता है, -15 भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है। ये टेम्परेचर ऐसा होता है जब विंटर्स होती है वहाँ पर, तो हमको सुबह सुबह उठ के फ्लाइंग करनी होती है, तो आपने ग्लव्स पहने होते हैं। अगर उस टेम्परेचर पर अगर पार्ट को हाथ लगा दिया, नंगे हाथ लगा दिए, तो आपको वही फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है।
0: तो सर उसको क्या समझे हम आम भाषा में?
1: फ्रॉस्ट बाइट मतलब जैसे बर्फ को अगर आप किसी अगर उस जगह पे करें तो आपका खून जम जाएगा वहां पर, वो खून आपको उंगली ही कटवानी पड़ेगी, आप वो उंगली ठीक नहीं हो सकती है, फ्रॉस्ट बाइट उसी को कहते हैं। तो अगर आपने सुबह सुबह ऐसा होता है कि जब हम हिल्स में सियाचिन ग्लेशियर हिल्स है बेसिकली, हिल्स में 11-12 बजे के बाद वेदर पैकअप हो जाता है।
0: अच्छा,
1: तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, और क्योंकि ऊपर लोग बैठे हैं जो जवान लोग ऊपर चोटियों पे बैठे हैं, उनको खाना पहचाना, उनको राशन पहुंचाना, उनको ऑयल पहुंचाना, उनको दवाइयां पहुंचाना, उनको जो कैजुअल्टी ऊपर बैठी है उसको नीचे लेके आना, लोगों के घर से जो चिट्ठियां आती हैं या उनकी चिट्ठियां जवानों के नीचे लेके आनी। मोबाइल वगैरह का टाइम तो हमारे टाइम पे नहीं था, जब मैं अपने टाइम, आज का क्या है मुझे नहीं मालूम। तो इन सबको करते करते हमारे को हम 2 घंटे फ्लाइंग करके फिर पेट्रोल खत्म हो जाता था, वापस आके फिर पेट्रोल भर के फिर दोबारा, तो 5:30-5 बजे हमारी फ्लाइंग शुरू हो जाती थी। 11-12 बजे के बाद हर रोज और तकरीबन वहां वेदर पैकअप हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है जितने भी ऊपर जो बीमार वगैरह है उनको जल्दी नीचे लाया जाए। हर पोस्ट के ऊपर एक डॉक्टर होता है, वो कहता है कि ये P1 कैजुअल्टी है, P2, P3,

0: अगर आदमी को नहीं निकाला आपने तो ये कल तक नहीं बचेगा. तो हेलीकॉप्टर पायलट्स का ये प्रोबिशन रहता है कि जल्दी से जल्दी उसको लाया जाए, और वेदर खराब मिला तो बहुत मुश्किल.
1: तो इसका मतलब सर हर रोज हर एक मिशन एक नया चैलेंज होता है आपके.
0: एब्सोल्युटली.
1: तो सर वो इस कदर टफ सिचुएशंस में आपको अपनी भी सेफ्टी तो रखनी होती होगी ना, तो वो कैसे फिर आप पॉसिबल कर पाते हैं?
0: टू बी ऑनेस्ट विद यू, हर फौजी जब उसी अपने मिशन पे काम कर रहा होता है ना, अपना तो नहीं सोचता है. वो सोचता कि मुझे हेलीकॉप्टर फ्लाइंग मिली है, मेरे को फ्लाइंग कर रहा है सियाचिन में. अगर वो डरेगा तो फिर आपको मैं एक तरीका बताता हूँ. जैसे आप अगर सुना होगा कभी कोई हेलीकॉप्टर का कभी भगवान ना करे एक्सीडेंट होगा ना, तो ऑर्डर ये होते हैं कि सारे के सारे हेलीकॉप्टर थोड़ी देर के बाद सब फ्लाई कर, ताकि जो पायलट्स ग्राउंड पे बैठे हैं उनके दिल में डर ना बैठ जाए. ये डर दूर करने के लिए हमेशा ऐसे होता है. जैसे मिक्स अगर मिक्स स्क्वाड्रन में कहीं कोई वो होता है क्रैश होता है, तो बाकी थोड़े मिक्स सब के सब फ्लाई करना शुरू कर देंगे, बिकॉज ये डर निकालने के लिए.
1: क्या बात है सर, ये
0: ट्रेनिंग का तरीका है. तो हम लोग अपना तो उस टाइम कहां सोचते थे, मतलब ऊपर जो जवान बैठा है उसको नीचे कैसे लाना है, जो बीमार है उसके उसको राशन कैसे पहुंचाना है. तो बहुत मतलब बहुत सोल्जर्स का बहुत जरूरी जज्बा होता है.
1: बिल्कुल सर, और वो जज्बा जो एक सोल्जर का होता है वो शायद हम महसूस भी नहीं कर सकते, जो एक सोल्जर का जज्बा, जैसे आपने कहा कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर.
0: एब्सोल्युटली
1: जी. तो सर ये जो चैलेंजेस आपके रहे इस तरीके से आपने जो मिशंस किए, तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज भी डराता हो याद आता हो?
0: ऐसा है जब हम लैंड करने जाते थे तो जो 17,000 feet 18,000 feet पे जहाँ हेलीकॉप्टर आपका उड़ना ही नहीं चाहता, पावर आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है.
1: जी, आपने बताया इस बारे में कि हेलीकॉप्टर इनकार कर देता है
0: फ्लाइंग की, बिकॉज पावर पूरी खत्म हो जाती है. जब आप लैंड करने जाते हो तो ऐसी जगह है, छोटा सा हेलीपैड होता है, वहां पर जो पोस्ट होती है वो लोग इग्लू के अंदर होते हैं, इग्लू के अंदर.
1: अच्छा.
0: बाहर सारी बर्फ इतनी पड़ रही होती है रात को, तो एच कैसे बार्क करे हेलीकॉप्टर हमको भी बताना है, क्योंकि हर जगह व्हाइट व्हाइट व्हाइट. तो एच क्या करते हैं, बाहर निकल के एच को पेंट तो है नहीं, कभी बॉर्नविटा से एच बना रहे हैं, कभी चॉकलेट पाउडर से एच बना रहे हैं, ताकि हेलीकॉप्टर आ सके. हेलीकॉप्टर उनके लिए जान होती थी. तो वहां पर उससे पहले क्रिवास 100 feet 200 feet 500 feet की क्रिवास होती है. तो एक बार आप लैंड करने जा रहे हो, उधर से पाकिस्तान को जब पता चलता था ये हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, तो एयर बर्स्ट एम्यूनिशन फायर करने शुरू कर देता.
1: यानी कि आपको चारों तरफ से वो खतरा
0: एब्सोल्युटली
1: उसका सामना भी करना है और मिशन भी पूरा करना है, और आपको लैंड करने के लिए जगह भी नहीं है.
0: कुछ सेकंड मिलते थे, हेलीकॉप्टर के ब्लेड आप रोक नहीं सकते.
1: अच्छा.
0: आप वहां पर रुकते हैं कुछ सेकंड के लिए, पीछे लोग आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, पूरा सामान निकालते थे, अपनी खाली टिन अंदर डालते थे, किसी कैजुअलिटी को नीचे आना एकदम जंप करता था हेलीकॉप्टर में. कुछ सेकंड्स भी हमको हेलीकॉप्टर हटा के वापस लाना होता था. तो मतलब कुछ सेकंड मिलते थे, कुछ आई विल नॉट से सेकंड्स, मे बी अप टू अ मिनट और टू, तो हमको इमीडिएटली वापस.
1: ये अगर मैं समझूं एक आम भाषा में, तो पलक झपकते ही आपका हेलीकॉप्टर वहां आना है.
0: हाँ.
1: और वो जो एक मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ सेकंड्स का उसको समय मिलता है, और उसको फिर वापस टेक ऑफ करना.
0: और हम सब ऑक्सीजन यूज कर रहे होते थे, लेवल पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है, तो हम सब ऑक्सीजन बॉटल्स में होते थे. मतलब वैसे भी अगर ऑक्सीजन वगैरह मास्क लगी हो, थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ी और भी कम हो जाती है.
1: तो सर ये जो खतरा जैसा आपने बताया कि हेलीकॉप्टर लैंड करना भी इतना मुश्किल होता था, कि नीचे जो आप बता रहे हैं वहां पर गहरी गहरी दरारें जो
0: क्रेवास,
1: उसके अलावा हेलीकॉप्टर भी आपके ऑर्डर कहता था कि मत मनवाओ मुझसे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक्सीडेंट कर बैठूं.
0: बिल्कुल.
1: तो दूसरी तरफ से आपने कहा कि दुश्मन भी आप पर
0: एयरबस एम्यूनिशन है,
1: कि वो कभी भी आप पर फायरिंग कर दे, तो दैट वाज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर फॉर यू ऑलवेज.
0: एब्सोल्युटली एवरी डे.
1: सर ये पूरा करियर आपका एज अ चैलेंजेस से पूरा भरा रहा, वाज दैट वेरी टफ स्कैरी और प्योरली मैं कहूं सेटिस्फाइंग जोश और जुनून देश सेवा जन सेवा से भरपूर, क्या कहेंगे आप?
0: मैं आपको मैंने पहले बोला था मेरा 25 साल में सबसे बढ़िया मेरा अगर कैरियर रहा है, ये 2 साल फ्लाइंग सियाचिन में सबसे ज्यादा मेरे को लगा मैंने जिंदगी में कुछ किया है. उसके बाद जब कारगिल में मौका मिला, फिर लगा एक और मौका मिला है, पर फ्लाइंग कैरियर इन सियाचिन वाज माय मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग.
1: तो मतलब कंप्लीटली सेटिस्फाइंग और पूरा जोश और जुनून से भरा हुआ.
0: Absolutely.
1: सर आपको कभी डर नहीं लगा?
0: कभी नहीं.
1: क्या बात,
0: कभी भी नहीं.
1: तो सर ये जो आपकी बात है, ये जो डैरिंग सोल्जर, हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को यहाँ पर के हमारे साथ बैठे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी, तो उनकी बातें सुन करके और उनसे बात करके मुझे भी जोश भर रहा है. तो ये जो
0: सॉरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं, सिर्फ मैं नहीं, अनिल नंदा नहीं, आप कोई भी सोल्जर देखिए, कोई भी ऑफिसर देखिए, आप उसको किसी मिशन पे भेज दीजिए, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता. ये मैं नहीं हूँ, ये पूरे सोल्जर की हमारी ट्रेनिंग है. हमारी ट्रेनिंग इतनी टफ है, एक बार ट्रेनिंग में एक बार मेंटली हमारे को ना फिजिकली टफ तो जितना होना है, हमारे को मेंटली बहुत टफ बनाया जाता है.

0: अब कोई भी ऑफिसर मेरे को, तो मैं तो फॉर्चुनेट था, मैं वहां पर था, मेरी जगह और भी भाई पायलट है मेरे फ्रेंड जिनको सीएचए में नहीं फ्लाइंग करने का मौका मिला। अच्छा। वो भी अगर मेरी जगह होते तो वही करते जो मैंने किया।
1: क्या बात है सर, मतलब सबकी एक ही मेंटालिटी होती है, एक सोच। और सर जैसे मैंने कहा कि ये पूरी तरीके से देश सेवा से भरपूर, और जो एक होता है ना कि अपनी पब्लिक के लिए, अपनी आवाम, अपनी जनता के लिए आप, तो जनता से भी आप कुछ, जैसे एक एक सोल्जर है तो वो चाहता है कि उसको भी तो वो एप्रिसिएशन और वो जो है ना वो प्यार मिलना चाहिए।
0: देखो मिलता है, अब आप जब जनता देखती है कि हमारे जनता को कब पता चलता है, जब से कारगिल जैसी लड़ाई होती है, जैसे सिंधूर जैसी लड़ाई होती है, ऑप्शन दूर होता है, तब उनको लगता है कि कुछ हो रहा है आर्मी के अंदर। उसके अलावा तो जनता सोचती है अभी फौज आर्मी वहां बैठी है, अपना काम कर रही है, अपनी तनख्वाह ले रही है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो बहुत तभी हम आराम से बैठते हैं।
1: और जैसे आपने कहा कि वो पूरा डेडिकेशन उनका होता है और सिर्फ एक ही फोकस होता है, वो होता है कि अपने मिशन को पूरा करना और अपने देश की सुरक्षा, उसकी हिफाजत। तो सर हमारी और आपकी बातचीत अभी जारी रहेगी, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपसे ये बताऊं कि हमारे पास मैसेजेस काफी आ चुके हैं, अगर आप कहें तो मैं लेना शुरू करूं
0: आपकी मर्जी। आपकी
1: सर मैं यहां पर ये एक मैसेज जो मैं शुरू से लेना चाहूंगा, संदेश टू सोल्जर्स शो पर बहुत खूबसूरत गीत सुना रहे हैं और साथ में दिल को छू लेने वाली बेहद खूबसूरत जानकारियां मिल रही हैं, तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। ये है सर यश शिंदे, मुंबई से इन्होंने मैसेज किया है।
0: शुक्रिया।
1: जय हिंद सर जी, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल हैं ये महाराष्ट्र डहाणू वाणवाण से। इसके अलावा ये मैसेज है, जय हिंद कर्नल साहब, हम जान ये सवाल कर रहे हैं सर, ये हम जानना चाहते हैं रात में हेलीकॉप्टर यूज करना कितना सेव होता होगा। रोहित महर हैं ये, विजयपुर बारगढ़ ओडिशा से।
0: ऐसा है, हेलीकॉप्टर रात को हमारे फ्लाइंग नहीं करते हैं, जो हम यूज करते थे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर आर्मी के पास है, हम रात को फ्लाइंग नहीं करते, पर ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम पर हमको जब फुल मून होता है,
1: अच्छा,
0: तीन दिन महीने में ट्रेनिंग करनी होती है रात को,
1: ओके,
0: क्योंकि ऐसा होता है अगर हेलीकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कहां लैंड करे, रात को कहीं ऊपर न गिर जाए, इसलिए रात को वैसे ही फ्लाइंग नहीं करते। अगर कोई मिशन होता है, जैसे वॉर होती है, मिशन होता है, तो आई एम श्योर वो मौका भी होगा, मेरे साथ नहीं हुआ है, मौका होगा कि रात को आप जा सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप ट्रेन पाए,
1: ट्रेनिंग है आपको,
0: आपको थोड़ी सी चाहे मूनलाइट मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, बिल्कुल अंधेरे में फ्लाइंग
1: नहीं फ्लाई कर सकता। जी ये है सर, जय हिंद, मेरे पास कोई क्वेश्चन तो नहीं है बट जरूरी है, जो सरहद पार रात बिताते है वही हमें सुकून की नींद सुलाते, खुद मौत से आंख मिलाते हैं तभी हम आजादी से मुस्कुराते हैं। सर मुझे गर्व है आप जैसे वीर जवानों पर। जय हिंद सर, इनका नाम है, माय नेम इज सौम्या वर्मा सर।
0: थैंक यू वेरी मच,
1: ये लाइनें आपके लिए लिखी इन्होंने।
0: थैंक यू सौम्या जी, आई एम ग्रेटफुल।
1: और ये है सर अनिल नंदा सर जी, आपको मेरा सलाम, आप जो देश के लिए कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ा काम है, सोल्जर होना ही एक अलग ही लाइफ है। जय हिंद। नंबर एक टनकपुर जिला चंपावत उत्तराखंड से लिख रहे हैं, इनका नाम है सर अनिल कुमार।
0: थैंक यू अनिल जी।
1: और ये सर मैसेज आया है त्रिचुरापल्ली से सर, श्रीरंगम राजेश का, गुड इवनिंग टू ऑल इन न्यू दिल्ली AIR 102.6 सैल्यूट एक्स आर्मी पायलट कम ग्रीटिंग्स फ्रॉम श्रीरंगम राजेश। और सर इन्होंने बस यही ग्रीट किया है सर।
0: थैंक यू वेरी मच सर।
1: और ये है विकास थापर सर, DLF 2 गुड़गांव से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको, वी लव यू अनिल नंदा जी, ही इज अ ग्रेट कम्युनिटी वर्कर टू हेल्पिंग द रेजिडेंट्स ऑफ DLF 2 फॉर मेनी इयर्स, ही इज आल्सो प्रेजेंट ऑफ आवर।
0: विकास जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी जी,
0: तो ये थैंक यू विकास जी।
1: जय हिंद सर, व्हाट इज द प्रोसीजर टू जॉइन एज पायलट टू जॉइन द आर्मी सर, ये इनका सवाल है। ये है प्रवीण जी।
0: प्रवीण जी ऐसा है, आपको पहले तो अगर आर्मी पायलट बनना है तो आर्मी में आप आर्मी ऑफिसर होना चाहिए, उसके बाद आपका PABT टेस्ट होता है, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट, तो टेस्ट पे आप क्लियर हो जाते हैं, जब आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपकी मेरिट बनती है, जो आपकी आर्मी सर्विस की प्लस आपके जो टेस्ट के मार्क्स आए हैं उसकी मेरिट लिस्ट बनती है, उस मेरिट लिस्ट पे जो आप अगर आप टॉप में आ जाते हैं तो आपको पायलट सेलेक्ट कर लिया जाता
1: है। सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि हमें जैसे इन लोगों ने सवाल किया कि पायलट बनने के लिए इनको कहां से कैसे प्रोसीजर क्या है, तो उसके लिए
0: ये आर्मी पायलट की बात कर रहा हूं।
1: आर्मी पायलट की?
0: हाँ
1: जी जी जी,
0: हाँ जी।
1: एयरफोर्स की नहीं?
0: हाँ जी। नहीं आर्मी मतलब सिविल की नहीं, मैं आर्मी और एयरफोर्स का अलग,
1: एयरफोर्स का अलग प्रोसीजर है।
0: हाँ जी
1: जी। तो सर सभी को IMS ही होना?
0: नहीं ऐसा नहीं, मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी ग्रेजुएशन के बाद होती है, उससे पहले NDA होता है, कोई NDA के बाद हम तीन आर्म्स में चले जाते हैं, कोई नेवी चला जाता है, कोई एयरफोर्स, कोई आर्मी में चला जाता है।
1: राइट सर।
0: था इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो ग्रेजुएशन के बाद में गया था
1: जी,
0: तो उसके बाद आर्मी में जाने के बाद आप ऑफिसर बनने के बाद फिर आप फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हो, अगर एयरफोर्स में अगर NDA में जाते हो

0: तो सीधा डायरेक्ट फ्लाइंग ब्रांच में आपको टेस्ट होगा. Okay. अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में सिलेक्ट हो जाते हैं तो चले जाएंगे.
1: राइट सर. सर एक मैसेज और है ये, और जय हिंद सर मेरे पास. अच्छा ये दोबारा से इन्होंने मैसेज किया है, उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेरी से इन्होंने लिखा था, नाम लिखा था, जगह नहीं लिखी थी, इन्होंने दोबारा मैसेज किया.
0: थैंक यू वेरी मच
1: जी. और त्रिशोपल्ली श्रीरंगम राजेश ने सर आपको धन्यवाद किया है, आपने जो उनको जवाब दिया उनके सवाल का. और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत जारी रहेगी हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी के साथ. लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए ये एक्साइटिंग ट्रैक का भी सिलसिला रहेगा जारी. आप हैं शाहिद के साथ.

0: आप सुन रहे हैं और हमारे साथ हैं हमारे योद्धा, हमारे लोहे का बंदा, अगर मैं सर विद ड्यू रेस्पेक्ट आपको, लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। सर ये गीत मैंने बिल्कुल टोटली आपको ही डेडिकेट किया था। वो जो जोश और जज्बा आपने बताया उससे मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए।
1: थैंक यू सो मच
0: सर। हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जैसे आपने जब हेलीकॉप्टर पायलट के करियर के बारे में बात करी तो वो अपने आप में बहुत ही डायरिंग और अमेजिंग था। तो जब शहीद जो हो जाते हैं हमारे सिपाही तो उनको,
1: हाँ मैं बल्कि बताऊँ, अच्छा आपने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है। मैं ये आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब एक बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था हेलीकॉप्टर्स के बारे में, जब हम उड़ा रहे थे सियाचिन ग्लेशियर में, तो हमें पता चला एक गन पोजिशन थी जिस पर एवलॉन्च आ गया था।
0: अच्छा।
1: तो वहाँ के 14 सोल्जर्स उनके वो उनके नीचे उसमें चपेट में आ गए। तो हमको बोला गया कि वहाँ पर जाइए और उनको लेके आइए नीचे, उनके बॉटल रिमेन्स को। तो आप विश्वास नहीं कर सकते, मेरा पहला एक्सपीरियंस था लाइफ के अंदर जब हम हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे हमारे उधर, तो वहाँ पर जब ये लोग थे और पूरा बर्फ के नीचे से लोग निकाल के रखे वो उतने साइड पे उन्होंने उसके ऊपर, तो उनको हमने जब पहली बार हेलीकॉप्टर में एक सोल्जर के बॉटल रिमेन्स मैंने पिछले हेलीकॉप्टर में अपने डाली, हम दो हेलीकॉप्टर में पायलट थे, हमने उनके पीछे डाली। क्या आते हैं, हमारा एम ये रहता है, इंडियन आर्मी का एम ये रहता है कि बॉटल रिमेन्स फैमिली तक पहुंचे ताकि उनके अच्छे से लास्ट राइट्स हो सके।
0: राइट।
1: जब मैं पहली बार बॉटल रिमेन्स लेके हेलीकॉप्टर से नीचे आ रहा था, आप विश्वास नहीं करोगे, आपने जैसे रोंगटे खड़े होने की बात की है ना, मेरे रोंगटे तब खड़े हुए थे लाइफ में। और मैं बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा था, मेरे हेलीकॉप्टर में पीछे किसी के बॉटल रिमेन्स पड़े हैं, बार बार ऐसे देख रहा था। जब हम लैंड कर रहे थे जहां पर पूरी दोनों साइड पे आर्मी के बहुत जवान ऑफिसर्स जेसीओस खड़े थे और सब सैल्यूट कर रहे थे टू रिसीव दैट बॉटल रिमेन्स, एक एक करके हम सब बॉटल रिमेन्स को नीचे लेके आए, फिर वहां से आगे Mi-17 से, फिर वहां से चंडीगढ़ वगैरह बाकी दूसरे एयरक्राफ्ट में। तो बॉडी बॉटल रिमेन्स फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। तो लाइफ में ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि मतलब आई वुड से बहुत हार्ट
0: टचिंग। आपके साथी सिपाही जवान जब वो शहीद हो गए तो जाहिर है वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है।
1: एब्सोल्युटली
0: जी, उन्होंने देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दी।
1: हाँ जी।
0: और शहीद हुए सर। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो कारगिल युद्ध आपके सामने ही हुआ, तो क्या वजह रही, मतलब कैसे समझे हम के कारगिल युद्ध क्यों हुआ, क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थी, कैसे हुआ सब?
1: शायद मैं जल्दी से बताऊंगा कारगिल हुआ क्यों था, मुझे पता है ज्यादा हम लोगों के पास टाइम अब भी नहीं है बेशक आधे घंटे से ज्यादा। कारगिल हुआ क्यों था, ऐसा है कि हर साल हमारी जो आर्मी है अपने एरिया में कारगिल की हिल्स ऑक्यूपाई करती है
0: जी।
1: पाकिस्तान वाले अपनी हिल्स ऑक्यूपाई करते हैं। इस कारगिल का ऐसी जगह है जहां पर पाकिस्तान वाले विंटर्स में अपने वापस चले जाते थे और ये इंडियन आर्मी नीचे आ जाती थी, बिकॉज पूरे विंटर्स के ऊपर सोल्जर्स को उतना मेंटेन करना उस हाइट्स पे बहुत एक्सपेंसिव है। हम सियाचिन में करते हैं, हमें पता कितना करोड़ों का राशन, ऑयल, दवाइये, डॉक्टर्स बैठे, तो हम कारगिल में हम पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी नहीं करती थी। मुशर्रफ ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनके, जो पाकिस्तान ने क्या किया कि इस बारी जब 1998 की बात कर रहा हूँ, कारगिल 99 की बात आपको याद होगा, 98 अगस्त की बात कर रहा हूँ, जब इंडियन आर्मी अब हम नीचे उतर आए वो लोग पीछे चले गए, हमारे आने के बाद वो लोग वापस अपने एरिया से हमारे एरिया में आके हमारी हिल्स पूरी, उन्होंने हिल्स कैप्चर कर ली थी। तो वो जब कैप्चर कर ली तो हमको आहिस्ता आहिस्ता पता चला, जब फरवरी मार्च के अंदर जब हमारी पेट्रोलिंग पार्टी, अगर आपका नाम याद हो, कैप्टन सौरभ कालिया
0: जी,
1: ये सौरभ कालिया अपने 4 जाट के थे, 5 जवानों के साथ पहले पेट्रोल के लिए जा रहे थे, तो उनको कैप्चर किया था, उनको टॉर्चर करके डेथ किया, मतलब मारे गए थे बेचारे। और सेक्टर्स में भी हमको बाकी जो गडरियाज वगैरह, उन्होंने बताया कि आपकी तो पूरी दूसरी तरफ की आर्मी बैठी हुई है, ऐसी इंटेलिजेंस खबरें आनी शुरू हुई। तब हमें पता चला मार्च 99 की आर्मी, पाकिस्तान आर्मी वाले हमारे एरिया में बैठे हैं। तो हमको बोला गया कि हमारी यूनिट, हमारे कर्नल गुप्ता हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, मैं उनका 2IC था, हमको बोला गया कि आप अपनी यूनिट लेके पहले बोफोर्स रेजिमेंट आप कारगिल में जाइए। हमारी 6 गन्स सियाचिन में ऑलरेडी फायर कर रही थी, 6 गन्स कारगिल में ऑलरेडी थी। रेजिमेंट हेडक्वार्टर 10-6 गनों को और बोला गया आप जल्दी से जाइए, पहली बोफोर्स रेजिमेंट थी हमने जो क्रॉस किया
0: जी। तो कारगिल युद्ध के योद्धा लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी, 1999 में जब कारगिल में तोपों ने आसमान का सीना चीर

0: कर रख दिया उस समय आप अपनी यूनिट के सेकंड इन कमांड थे सर, राइट?
1: एब्सोल्युटली।
0: तो आपकी ही यूनिट ने सबसे ज्यादा गोले भी दागे, और कितने गोले दागे सर, वो पूरा एक रिकॉर्ड है अपने आप।
1: हमारे पास जो हमने कारगिल के अंदर फायर किया उस टाइम पर करीब 9200 गोले फायर किए थे हमने।
0: ओके।
1: हमारी यूनिट पहली यूनिट थी बोफर्स यूनिट जो कारगिल वॉर के अंदर गई थी। जैसे मैंने आपको बताया छह गने हमारी सियाचिन में थी और छह गने तो वो भी लगातार फायरिंग कर रही थी। तो टोटल दो साल में तो हमने 18,000 गोले फायर किए, ये रिकॉर्ड है। आज अच्छा। तक किसी ने पहले नहीं किया था, बाद में नहीं किया, पर ड्यूरिंग कारगिल वॉर हमने 9,200। आप विश्वास नहीं करोगे, जब हमारी सारा दिन सारी गने फायर करती है, हम पास में बैठे होते हैं तो हम बहरे हो चुके थे अभी भी, बल्कि हमारे को फिजिकली इफेक्ट हुआ है। आप गनर्स और आर्मर्ड कोर ऑफिसर्स को देखोगे या जवानों को देखोगे, उनका हार्ड ऑफ हियरिंग हो जाती है टुवर्ड्स द एंड जाके। तो हमने लगातार फायरिंग किया।
0: तो वो सर जो मोमेंट्स रहे वो भी अपने आप में, जैसे आपने बताया कि वो आपके सामने सब कुछ हो रहा था, वो वॉर जोन में जब आप थे, तो वो जो के बारे में कुछ बताइए, कुछ जो सिचुएशंस थी वो क्या थी उस वॉर जोन में। और एक चीज और भी थी जो मैं जानना चाहता था आपसे, मैंने जो आपसे पूछूंगा कि व्हाट वर द रेड हिल्स, रेड हिल्स क्या है?
1: मैं बताता हूं आपको। ऐसा है कि आप जल्दी से संक्षेप में बताता हूं, तो हमने कारगिल क्रॉस किया था इन मंथ ऑफ मई, जबकि पूरी जुजिला पास 15-16 फीट बर्फ थी।
0: Okay.
1: हमको बोला गया था अभी निकलो वहां से, बॉर्डर रोडवेज काट रही थी बर्फ और हमारी गने आगे जा रही थी, फर्स्ट रेजिमेंट टू गेट इनटू द कारगिल। जब हम द्रास पे पहुंचे तो वहां पर कमांडर उस एरिया के आके हमको बताया, ये तो सब एरियाज में पाकिस्तानी लोग बैठे हुए।
0: Okay.
1: हम लोग सब हैरान हो गए, उन्होंने हमको मैप दिखाया तो सब हिल्स के ऊपर, हमारी जो हिल्स है इंडिया के हिल्स के ऊपर, पाकिस्तानी आके बैठे हुए थे। तो हमने पूरा का पूरा मैप रेड था।
0: अच्छा,
1: हमारे डॉक्टर क्यों खड़े हो गए कि हमारी सब हिल्स जो हमारी हैं, टाइगर होल हो या 5.1540 हो या अदर हिल्स, सब हमारी हिल्स पे पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो उनको निकाला, और अगले दिन हम ओपन में बैठे हुए हैं जैसे ऑफिसर बैठे हैं, तो पता चला वहां से पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी हमारी एरिया से। सो हमारे को तब बहुत पता चला कि हमको ये तो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है।
0: तो इसलिए वो जो चूंकि ऑक्यूपाइड थी चारों तरफ से हमारी ही हिल्स,
1: हमारी
0: हिल्स, रेड हिल्स का नाम दिया गया।
1: मैंने रेड हिल्स का नाम दिया, मैंने बोला है कि उनको पूरा रेड मार्क था मैप के अंदर, पूरा एरिया पूरा हिल्स रेड मार्क थे। रेड मार्क्स मीन एनिमी,
0: एनिमी,
1: और ब्लू मीन्स हम। अगर वो सारी रेड थी तो इसका मतलब एनिमी हमारे एरिया में बैठा हुआ है, दैट्स व्हाई आई वाज कॉलिंग रेड।
0: सर वहां की कोई ऐसी आपके साथ कोई इंसिडेंट जुड़ा हुआ है जो आपको आज भी याद आता हो, कोई ऐसी याद उस मोमेंट की, उस वॉर जोन की, कारगिल वॉर की?
1: ऐसा है कि मतलब हमको ये था कि जैसे रोड क्रॉस, हमने दराज से हमको कारगिल जाना था और बीच में पाकिस्तानी पोस्ट हमारे रोड्स को देखती थी, मतलब रोड देख रही थी, और गन्स हमारी इतनी बड़ी बड़ी बोफोर्स गन को लेके जाना, तो हमारे जो ऑफिसर्स जवान्स को लेके जाना रात को, उनको तो पता था पाकिस्तानी यही रोड है, ऊपर एक ही रोड थी ऊपर जाने के लिए, उन गन्स को बिना आवाज़ किए उस रोड से क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम था। और मतलब
0: यानी कभी भी कोई भी अटैक आप पर हो सकता
1: था, होता था, वो फायर करते थे।
0: अच्छा।
1: इसीलिए कोशिश होती थी रात को जाओ, रात को जाओ तो दिखाई नहीं देता था, दिखाई दे तो मतलब ऐसा है कि इतनी चौड़ी गन, ये छोटी गन तो है नहीं, छोटी सी गाड़ी, छोटी सी रोड पे, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें तो थी नहीं। मेरा मतलब टाइम वो बहुत टफ था, पर हर बंदे में इतना जज्बा था। और हमको बोला गया कि जैसे पता चला ज्यादा बुरा हाल है तो आप आगे चलिए, और बोफोर्स की यूनिट और आ रही है, हमारे बाद 9 यूनिट और आई। तो ग्रेजुअली हम लोग आगे आगे ग्रेजुअली सेटल होना शुरू हो गया। तो उन्हीं दिनों में हमारे को पता चला इस जगह से बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है, तो हमारी बोफोर्स ने वहीं से दराज से एंगेज किया। तो पहले कुछ दिनों के अंदर 16 से 19 मई की बात है, हमने 17 पाकिस्तानी सोल्जर उन दिनों में मार दिए, उन दिनों में उनका कैजुअलिटीज कर दी।
0: अच्छा।
1: और जहां से फायर आ रहा था मीडियम मशीन गन थी, उसको भी उड़ा दिया। और मतलब पहले दिनों में कितनी सक्सेस मिल गई, फिर आगे आगे करके तो बहुत सक्सेस मिली।
0: तो मतलब जाहिर है जो सोल्जर्स जो जवान थे उनका जोश पूरी तरीके से हाई था, और वो पूरी तरीके से दुश्मन को खदेड़ने के लिए तैयारी करके गए थे कि अपनी सरहदों से उनको बाहर निकाले।
1: शायद जी मैं आपको बताना चाहता हूँ जल्दी से बात की, ऐसा है कि हर हिल्स के ऊपर
0: जी
1: इन्फेंट्री अटैक जाता था।
0: Okay.
1: इन्फेंट्री अटैक जाता था, पूरा प्लानिंग से जाता था, पूरा ब्रिगेड डिवीजन सब प्लानिंग होती थी, आज इस हिल को हमने पाकिस्तानी पे अटैक करना है, तो इन्फेंट्री बटालियन को काम दिया जाता। तो वो हिल्स होती है ऊपर, जवानों ने फायर जाना है ऊपर अटैक करना है, बहुत मुश्किल होता है नीचे से ऊपर अटैक करना, कोई ऊपर बैठ के अगर पत्थर भी फेंकेगा ना आपको चोट लगेगी बहुत बुरी तरह। हमारे जो ऑफिसर्स जेसीओ जवान वो ऊपर फायर करते थे, हम लोग क्या करते थे बोफोर्स या और आर्टिलरी यूनिट्स पहले उस जगह को

0: पल्वराइज करते थे, उसको पूरा हम दबाते थे ताकि इतना फायर करते रहे कि पाकिस्तानी बाहर आके ओपन हमारे पे लोगों फायर ना कर सके. हमारे लोग चल रहे हैं ऊपर से हम फायर करते जा रहे हैं, तो पहले उनके पास पहुंचने से पहले हम आर्टिलरी फायर उठाते थे तब वो हमारे लोग अटैक करते थे. तो ऐसे होता था कि हर पता चलता आज यहाँ इस हिल पे फायर जा रहा है, इस हिल पे अटैक जा रहा है, इस हिल पे अटैक जा रहा है, तो हम वेट ही करते रहते थे क्या हुआ क्या सक्सेस वेट कर रहे थे. अच्छा. हमको सक्सेस मिला है के लिए.
1: जी
0: दिस वाज एवरी डे लाइक ए वॉर, एवरी डे
1: एवरी डे. और सर ये लगातार
0: ये मतलब जून तक एंड तक चलता रहा.
1: और सर इस दौरान जो फौजियों का जो मनोबल था, सिपाहियों का,
0: बहुत हाई था, बहुत हाई था, बहुत हाई.
1: तो सर वो फिर कैसे कनेक्ट रहते थे जैसे परिवार से? तो बिल जाहिर याद आती है, तो कोई चिट्ठियां या कोई कम्युनिकेशन कैसे करते थे?
0: ऐसा हमारे को ना हफ्ते में एक बार ही फोन मिलता था, थोराया फोन मिलता था, थोराया सैटेलाइट फोन है.
1: तो कुछ अच्छा स्पेशल फोन होता,
0: स्पेशल थोराया फोन एक आया, एक यूनिट में आता, आप अपनी फैमिली में एक हफ्ते में एक बार बात कर सकते. हमारी फैमिली तो सारी बाप वाइफ बच्चे सारे टीवी से जुड़े होते थे, शायद कुछ खबर आ जाए. मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे उन जमाने में, तो थोड़ा फोन मिलता आपको हफ्ते में एक बार बात करने के लिए, कुछ मिनट के लिए अपनी फैमिली से बात करते थे, वो सुन लेते थे, माँ बाप आवाज फैमिली सुन लेते, को अच्छा लगता. इधर से चिट्ठियां इतनी आनी शुरू हो गई. शायद ये बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है. पूरा देश ये टीवी की लड़ाई थी, आपको पता ये टीवी की लड़ाई थी, टीवी में सब दुनिया देख रही थी लड़ाई. तो लोगों ने इतनी चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी, मिठाइयां भेजनी शुरू कर दी सोल्जर्स के लिए. अच्छा. अच्छी अच्छी चीजें. पर उन्होंने क्या हुआ, सामान ऊपर आना शुरू हुआ तो ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया. जहां हमको एम्यूनिशन चाहिए था गाड़ियों का, वहां पर चिट्ठियों वाले ट्रक रोके, फिर उनको रोकना पड़ा.
1: अच्छा. तो सर ये फिर मोमेंट, मतलब जाहिर है जो सोल्जर है वो फ्रंट पर है, लड़ रहा है दुश्मन से, तो उसको भी थोड़ा मोटिवेशन तो चाहिए.
0: बहुत मोटिवेशन, बहुत मोटिवेशन. मतलब हर कोई छुट्टी तो हम सबकी कैंसिल
1: थी, तो कैंसिल.
0: इंसिडेंट बताता हूँ मेरे दिमाग में जो आया है. एक हमारे यूनिट के अंदर एक आदमी आया हमारे पास, कमांडिंग ऑफिसर साहब के पास, कि कहता है कि सर मुझे छुट्टी जाना है, लड़ाई चल रही है, छुट्टी जाना. कहते सब मजाक कर रहे हैं तो छुट्टी मांग रहा है इस टाइम पर लड़ाई में. कहता बहुत जरूरी बात है, मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर मैं नहीं गया तो वो मर जाए. कमांडिंग ऑफिसर ने बोला भी इतनी बात है तो चले जाओ भाई. कारगिल से बेचारा श्रीनगर आया, श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से आगे, जम्मू से आगे घर गया. चार पांच गया था 15 दिन के लिए. अच्छा. चौथे दिन में हमने देखा वापस आ गया यूनिट के अंदर. हमने पूछा तुम वापस कैसे आ गया? कहता साहब मैं गांव पहुंचा, बहुत जूते पड़े मेरे को मेरे को गांव वालों ने इतने जूते मारे. कहते पूरी लड़ाई लड़ रहा है देश और तुम घर में अपनी माँ के लिए, तेरी माँ को हम संभालेंगे, तो वो अपना देश के लिए लड़.
1: क्या बात है सर, क्या बात है.
0: और मेरे साथ हुआ शाह जी, मेरे साथ हुआ ऐसा. मिसेस चोना मेरे बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल थी, आरकेपुरम की
1: जी,
0: उनकी मुझे चिट्ठी आई कि कर्नल साहब आप देश के लिए लड़िए, बच्चे मैं आपकी संभालूंगी. मिसेस चोरा ने मेरे को चिट्ठी लिखा.
1: सर ये है मतलब ये जो जज्बा देशवासी,
0: पूरा देश आपके साथ खड़ा,
1: अपने सिपाहियों के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ
0: पूरा खड़ा होता है देश आपके साथ.
1: बिल्कुल. सर आपने बात की चिट्ठियों की, कम्युनिकेशन की, के सोल्जर्स को, सिपाही को जब घर से कोई चिट्ठी आती है या वो कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उस पर क्या असर होता है. मुझे था ये जहन में क्या है, मैं ये गाना चलाऊंगा और आपकी पसंद का भी यही है.
0: थैंक यू वेरी मच.

0: 101.6 नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स चल रहा है। मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। सर, हम कारगिल वॉर पर बात कर रहे थे और हम वहां पर आपकी बातों में लग रहा था जैसे हम उसी मोमेंट पर उसी वॉर जोन में पहुंच गए हैं। तो सर, कुछ ऐसी यादें भी हैं जो आपको आज भी, कुछ खूबसूरत यादें भी हैं, जाहिर है सब बहुत ही, वो जो टेरेन था, वो जो सिचुएशन थी वो बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ यादें आपके साथ जुड़ी।
1: हाँ, बिल्कुल है। मेरे को बहुत प्राउड फील करता हूँ जब मेरे को ये बताना चाहता हूँ कि आपको कि उस एरिया में जो कमांडर साहब थे हमारी यूनिट के, बहुत काबिल ऑफिसर ब्रिगेडियर देविंदर सिंह जो 70 ब्रिगेड कमांड कर रहे थे, उन्होंने का बहुत बड़ा सहयोग रहा है कारगिल वॉर में। बटालिक सेक्टर के कमांडर

0: ने बहुत बड़ा बढ़िया काम किया, हमारी यूनिट में उनको पूरा का पूरा सपोर्ट किया, अपनी ही उनकी अपनी यूनिट थी, तो हमारी यूनिट 307 मीडियम ने बहुत अच्छा काम किया कारगिल के अंदर और पूरा अपने कमांडर साहब को भी पूरा सपोर्ट दिया। प्लस उसके वॉर के अंदर हमारे कई ऑफिसर्स को अवार्ड्स भी मिले, एक हमारे कैप्टन साजू चेरियन है उनको सेना मेडल मिला, अच्छा। एक मेजर दैया, उस टाइम मेजर दैया बाद में कर्नल दैया, उनको और एक सी विजयन को मेंशन इन डिस्पैचेस मिले, मेजर झुलका मिला उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला, एक कैप्टन अतुल है उनको GOCNC कमेंडेशन कार्ड मिला, हमारी खुद यूनिट को नॉर्दर्न कमांड आर्मी कमांडर का कमेंडेशन कार्ड मिला, तो हमारी काफी यूनिट ने काफी अचीवमेंट की,
1: बहुत अचीवमेंट,
0: बहुत अच्छा काम किया।
1: बिल्कुल सर, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपने ये जो सर्विस दी अपनी एज एन हेलीकॉप्टर पायलट और फिर उसके बाद आपने कारगिल वॉर में भी जो भी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी, उसके बाद सर फिर आपने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के लिए भी काम किया तकरीबन 5 साल और उससे ज्यादा, तो उसके बारे में थोड़ा सा
0: मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में मैंने 5 साल काम किया और मैं काफी अच्छे काम किया, हमने मैंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसीजर्स में मैंने काम किया, DPP 2006 में मैंने बनाई है प्रोसीजर बैठ के बाकी लोगों के साथ मिलकर, हमने पूरे प्रोसीजर्स बनाए प्रोक्योरमेंट वगैरह के बाद, प्लस इंटरनेशनल डिफेंस सेक्रेटरी सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन वगैरह के साथ, इन लोगों के साथ मैं आउट ऑफ कंट्री भी बहुत ट्रैवल किया, जितने बड़ी बड़ी वर्ल्ड की एग्जीबिशन, जितनी नेगोशिएशंस विद पब्लिक सेक्टर कंपनीज और पूरा के पूरा हम लोगों ने काफ़ी काम किया, 5 साल का बहुत मुझे अच्छा एक्सपोजर मिला, उसकी वजह से फॉरेन कंपनीज ने भी मेरे को देखा कि मैंने अच्छा काम किया, तो उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया, फिर मैंने उसके बाद फिर क्योंकि दिल्ली छोड़ने का मेरी मजबूरी थी आर्मी छोड़ने की, अच्छा। दिल्ली में ही रहना था, बच्चे छोटे थे, तो मेरे को इसलिए फिर मैंने आर्मी छोड़ी और फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर में आ गया, मैं जॉब शुरू किया
1: आपने। फिर सर आपने बहुत लोगों की हेल्प करी और आगे बढ़ करके मदद करने में, ब्लड डोनेशन में, उनको राशन और बाकी चीजों में भी, तो वो किस तरीके का एक्सपीरियंस था उस दौर में, बहुत ही एक डर वाला जो माहौल बना हुआ था,
0: शायद मैं बताता हूँ, मेरे ना 15 साल ये जब मैं अपने तो मैंने बोला अभी बहुत हो गया, बस 40 साल मैंने नौकरी कर ली है, अभी थोड़ा बहुत समाज सेवा भी करनी चाहिए, समाज सेवा हमारे पूरे खानदान में, मेरे फादर मदर मेरी बहनें ब्रदर बहुत समाज सेवा करते हैं अपने अपने लेवल पे, मैंने सोचा हम कुछ समाज सेवा करना चाहिए, तो मैंने RW का एक जो जरिया मिला जिसकी मदद में हमने RW में आया और RW में लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम ठीक करनी शुरू की, फिर कोविड का टाइम आ गया, कोविड के टाइम पर ऐसा था जो कोई घर से नहीं निकलना चाहता था, हम लोग कुछ थे जो RW के मेंबर्स थे वो पूरे दिल से पूरे जोश से घर से निकलते थे, पूरी इतनी हमारी बहुत बड़ी कॉलोनी है, उस कॉलोनी को पूरा संभालने के लिए हम लोग किसी को तो आगे आना था, तो हमारे RW के सारे मेंबर्स सारे बाहर आते थे सिक्योरिटी के साथ, गेट्स को मैनेज करना किसी, और कोविड ऐसी चीज थी आदि माँ बाप घर से ना निकले, माँ बाप चाहते बच्चा घर से ना निकले, पर हमारी ड्यूटी थी, तो हम लोगों को राशन पहुँचाना, लोगों को जिनको ब्लड डोनेशन जिनको ब्लड की जरूरत, आप पता होगा ब्लड की इतनी शॉर्टेज हो गई थी, हॉस्पिटल बेड्स की इतनी शॉर्टेज थी, हमारी कॉलोनी में हमारे RW ने ऑक्सीजन बॉटल्स तक किया, अपना एक टेम्परेरी कैप लगाया, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मिलकर काम किया, लोगों के राशन बांटे, किसी ओल्ड एज पीपल को ओल्ड कपल को किसी को या किसी सीनियर सिटीजन को किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो पीना हम उनके घर में पहुंचाते थे, तो बहुत सेवा की, तो उससे क्या मैं एक के बाद मैं 3 टाइम मैं RW में लगातार आता जा रहा हूँ क्योंकि लोगों का प्यार बना हुआ है, तो मुझे चाहते भी है कि मैं वापस आऊं, तो
1: सर उनका प्यार और आपकी सेवा लगातार अभी भी बने हुए हैं, आप अभी भी लगातार सेवा कर रहे हैं।
0: हाँ जी, वो चाहते हैं मैं जुड़ा रहूं तो मैं जुड़ा, जब चाहेंगे नहीं होंगे तो मैं बाहर चला जाऊं।
1: लेकिन सर आपने इतना सब जो अपने पूरे करियर में किया वो मतलब बड़े अचीवमेंट्स हैं, वो बहुत ही रिमार्केबल हैं, लैंडमार्क्स हैं वो, तो इसमें सर आपकी फैमिली का भी जरूर सहयोग और सपोर्ट और हेल्प रही होगी, किस तरीके से आपको वो लगातार इन सब चीजों के लिए, भले ही वो वॉर जोन में आप थे तब आपके पेरेंट्स आपके ब्रदर सिस्टर
0: मेरे माँ बाप बहन भाई मेरे मतलब मेरी वाइफ बच्चे लड़के हैं, मतलब 3 बच्चे हैं अंकित शिवेन और मेरी बेटी साहिबा है और मेरी डॉटर इन लॉ दृशिका है, हम सब ने मतलब पूरा का पूरा, क्योंकि मैं ये काम करता था तो वो पीछे से सपोर्ट करते हैं, अपनी तरफ से जो वो कर सकते हैं वो करते हैं, मेरे को सबकी सपोर्ट है उन लोगों
1: की। बिल्कुल सर,
0: आई एम क्वाइट अ ब्लेस्ड मैन।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो सपोर्ट होती है खासतौर पर फैमिली की, तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होती है और वही आपको आगे बढ़ने का हौसला भी देती है।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो यहाँ पर सर मैं अभी तो हमारे पास जो समय बहुत कम बचा है, लेकिन फिर भी चलते चलते ये जो मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं जरूर मैं आपसे शेयर करूँ।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: ये टेक्निकल ग्रेजुएट है, ये कहते हैं कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रेजुएट, विच ब्रांच ऑफ आर्मी

0: Can I join?
1: He can join every branch. If, as an engineer, he can join as a technical. When okay. he comes, as a, there's a special called technical branch in the army. He can apply for that. Okay. And as an engineer, he can join that technical branch.
0: Right, sir. And sir, this message is Mansoor Ali ka Bikaner se. And ye aapko namaskar karein. Namaskar.
1: Sir. Namaskar ji.
0: And ye hai Karunanda is very humble person and very helpful. Salute to him. Regards, Vinod Tayal hai sir. Ye DLF Gurgaon se. Please air this message on your FM. I am online. Thanks.
1: Thank you very
0: Bravo,
1: much, Vinod ji.
0: Karunanda. Wah wah, Karunanda. Great of you.
1: थैंक यू वेरी मच विनोद जी.
0: मल्टीपल मैसेजेस इन्होंने किए सर आपकी तारीफ में.
1: और नहीं, ये है तारीफ सर, क्या था, आपस का प्यार है सबका ही.
0: बिल्कुल सर. ये सर हैं डॉक्टर दीपक जोशी. सर ये अच्छा, ये शायद रेडियो डॉक्टर के लिए मैसेज कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट चाहते हैं. और ये है सर, नमस्कार, जय हिंद यशवंत. आडमुटे हैं धाराशिव महाराष्ट्र से सर ये.
1: हाँ सब श्रद्धा जी.
0: और सर ये है, हमारा देश का फौजी भाइयों की हमेशा सैल्यूट, और देश हित ना रचने के लिए उनका जीवन त्याग में जीवन है. बहुत प्यार से सैल्यूट करता हूं मैं कर्नाटक स्टेट विजयपुर डिस्ट्रिक्ट अराकेरी गांव से पंडित चनप्पा सौंदर्य तेजस्विनी सरावद.
1: तो सर आप साहब थैंक यू
0: जी, ये आपको सैल्यूट करते हैं. thank और you, कहते हैं सोल्जर भाइयों का हमारा सैल्यूट, हमारा भारत माता की रक्षा सभी क्षेत्र में उनके बलिदान का श्रेष्ठ जीवन का संदेश है.
1: थैंक यू वेरी मच.
0: और सर ये एक और मैसेज मैं पढ़ दूं, फिर इसके बाद समय बिल्कुल खत्म. मेरी तरफ से सभी सोल्जर्स को जय हिंद जय भारत. रंजीत मस्ताना रायबरेली.
1: थैंक यू.
0: तो सर ये सब बहुत ही प्यार भरे मैसेज आपके लिए, प्यार का इजहार है सर हमारे इस शो में. और हम आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद करना चाहेंगे. यहाँ पर चलते चलते लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी, जोश से भरपूर हमारे सोल्जर हमारे साथ रहे सर.
1: थैंक यू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक.
0: थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर.
1: थैंक यू.

0: अर्धवाची
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: न्यूयॉर्क नगरे 88तम संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रसंगे विदेश कार्य मंत्री एस जयशंकरेण फिपिक विदेश मंत्रिमंडलस्य द्वितीय उपवेशनम् समलंकृतम्। तेन सहभागी देशैः सह क्षेत्रीय सहयोग संवर्धनाय दृढ़संकल्पः प्रख्यापितः। त्रयोविंशत्युत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे उद्घोषितायाः प्रधानमंत्री मोदिनः द्वादश सूत्रीय कार्ययोजनायाः प्रगतिमधिकृत्य सम्भूय समीक्षा प्रोदीरिता। प्रमुख रक्षा अध्यक्षः जनरल एनएस राजा सुब्रह्मण्यः अद्य न्यगादीत् यत् युद्धकलायाः परिवर्त्यमान स्वरूपानुसारं भारतस्य सैन्य अधिग्रहण तंत्रस्य द्रुत परिवर्तनं सर्वथा अनिवार्यम्। नवदिल्ल्यां रक्षा शिखर सम्मेलने संबोध्य तेन समदीदृशी यत् प्रौद्योगिकी दत्त सामग्री उद्योगानां समवाय सम्बन्धेनैव रक्षा पारिस्थितिकी तंत्रं सुदृढं भवति। तेन प्रोदीरितं यत् प्रौद्योगिकी उद्योग संशोधनानां त्रिवेणी संगमेन रक्षा पारिस्थितिकी तंत्रं अभूतपूर्वां प्रतिष्ठां प्राप्स्यति। संचार विघ्नेष्वपि अप्रतिहता कृत्रिम प्रज्ञा एव भावि युद्धानां जय हेतुः संभविष्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया पीएएफआई 50-60 इत्यस्य त्रयोदश वार्षिक अधिवेशनस्य उद्घाटन सत्रे इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी विभागस्य सचिवः एस कृष्णन वर्यः प्रतिपादितवान् यत् भारतवर्षम् अधुना देशस्य स्वदेशीयायाः चलदूरभाषमाङ्गल्यस्य प्रायः 99.2% भागं स्वयमेव निर्माति। तेन विशदीकृतं यत् भारते प्रतिवर्षं 30 वा 32 कोटि परिमिताः चलदूरभाषाः उत्पद्यन्ते। सहैव विश्वस्य 5 प्रमुखाः चलदूरभाषनिर्माणसंस्थाः अधुना भारते उपस्थिताः सत्यः अत्रैव स्वकीय यन्त्राणां निर्माणं सोत्साहं कुर्वन्ति। आयुर्विज्ञान राष्ट्रिय परीक्षा मण्डलेन अद्य नीट पीजी 50-60 इत्यस्याः प्रतिष्ठित परीक्षायाः परिणामः उद्घोषितः। परीक्षा एषा समग्रे अपि भारतवर्षे गते अगस्त मासस्य 30तमे दिनांके 50-60-70 इत्यस्य शैक्षणिक सत्रस्य विविध चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमेषु यथा हि एमडी एमएस डीएनबी द्रवीभूत षण्मासिक पाठभेदेषु तथा पीजी मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमेषु प्रवेशार्थं सोत्साहं समायोजिता आसीत्। मण्डलेनानेन विज्ञापितं यत् सर्वे अपि परीक्षार्थिनः अक्टूबर मासस्य प्रथमदिनाङ्कादारभ्य अग्रे वा स्वकीय संगणकीय पट्टिकायाम् आसाद्य आत्मनः अंकपत्रं स्वीकर्तुं पारयिष्यन्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य पश्चिम बंग तेलंगाना छत्तीसगढ़ तटीयांध्र प्रदेश ओडिशा राज्येषु अतिभीषण वृष्टेः संभावनामधिकृत्य रेड अलर्ट इति संचेतना प्रख्यापिता। ऋतु विज्ञान विभागेन बिहार झारखंड विदर्भ सिक्किम राज्येषु च अद्य अतिवृष्टि परं पूर्वानुमानं प्रकटितम्। एतदतिरिच्य अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु असम मेघालय पूर्वीय मध्य प्रदेश पूर्वीय उत्तर प्रदेश कर्नाटक केरल माहे मराठवाड़ा क्षेत्रेषु च अतिवृष्टेः संभावना प्रकटिता। ग्रेटर नोएडा मंडलस्थे यमुना द्रुत मार्गे ह्यः अर्धरात्रौ संवृत्तायां दारुणायां यानाग्नि दुर्घटनायां न्यूनातिन्यूनं 9 यात्रिणः

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री।

0: फसल बीमा।
1: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
2: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
2: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का पूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73,581 पर हुआ बंद। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशू में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की।
2: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना तथा सिविल सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
1: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
2: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
3: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है,

0: को समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना, और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक हैं उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
1: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए आईगोट प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI टेक्नीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CFC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
4: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
2: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजासुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणी ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
5: The character of war,
6: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सकें।
4: With the changing character of war.
2: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वो उचित समझे SIR आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
7: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 2400 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
8: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
2: आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
9: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
2: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
10: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रश्मिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
11: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
10: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्केट मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
2: जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशी बिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
13: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं हमें इन अनुभवों से भी सीखना है अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने
12: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India.
13: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना समझना देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली
12: Prime Minister Modi said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said seva parmo dharma, service as the highest duty should remain the guiding principle.
13: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे शब्दों में नहीं देंगे हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे
12: During the interaction, Seva Yatri shared their experiences with the Prime Minister. Defence Minister Rajnath Singh has said that it is essential to keep ground reality and national interest in mind for a good security policy. He was addressing an event organised by a media house in New Delhi. The Defence Minister said that a holistic approach must be adopted to address the challenges related to national security. The minister acknowledged that without diplomacy, military preparations can lead to confrontation and the security dilemma. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic customs duty on crude sunflower oil has been slashed to nil, while on soybean oil and palm oil has been reduced from 10% to 5%. The ministry said the government has simultaneously reduced the applicable basic customs duty on the refined edible oils while maintaining an import duty differential of 19.25% between crude and refined edible oils. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva, and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this

0: event. Let's now take a detailed look at athletics, where India got two medals today. Prerna Sharma has more.
1: Bharatiya athletes dikhane lage rang, ek ke baad ek medal, aur ab athletics mein gold ka intezar. Indian athletics ka medal account ab khul chuka hai, aur track and field se lagatar achhi khabre saamne aa rahi hain. Silver aur bronze dono medal Bharat ki jholi mein aa chuke hain. Ab intezar hai us sunhere pal ka, jab podium par gold ke saath Bharatiya tiranga sabse upar lehraye. Shuruaat karte hain mixed 4x400 मीटर रिले से, जहां इंडिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया. पूवमा राजू, विशाल थेनारसू, विद्याराम राज और मनु टीएस के क्वार्टेट ने 3:14.46 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया. इस रेस का सबसे खास पल आया आखिरी लेग में, जहां विद्याराम राज ने शानदार दौड़ लगाते हुए इंडिया को सिल्वर तक पहुंचाया. बहरीन के गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता और इंडिया ने हांगझाउ 2023 में जीता सिल्वर इस बार भी बरकरार रखा. अब बात उस मेडल की जिसने एशियन गेम्स 2026 में इंडियन एथलेटिक्स का खाता खोला. महिलाओं की 10,000 मीटर रेस में सीमा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. उन्होंने 32:50.05 का समय दर्ज किया. ये एशियन गेम्स 2026 में एथलेटिक्स का इंडिया का पहला मेडल है. साथ ही महिलाओं की 10,000 मीटर में यह 2010 के बाद इंडिया का पहला एशियन गेम्स मेडल भी है. 2010 में प्रीजा श्रीधरन ने गोल्ड और कविता राउत ने सिल्वर जीता था. 16 साल बाद इस इवेंट में एक बार फिर इंडिया ने पोडियम पर जगह बनाई है. अब रुक करते हैं मेंस 100 मीटर की ओर, जहां भारत के अनिमेश कुजूर और गुरविंदर सिंह ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है. अनिमेश कुजूर ने अपनी हीट में 10.36 सेकंड्स का समय निकालते हुए तीसरा स्थान हासिल किया. उनसे आगे थाईलैंड के पूरीपोल बूनसन और चाइना के जेन केली रहे. तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद अनिमेश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया. वहीं हीट 4 में गुरविंदर सिंह ने 10.38 सेकंड्स का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की. यानी अब मेंस 100 मीटर में भारत की उम्मीदें दोनों स्प्रिंटर्स पर टिकी हैं. अब बात करेंगे ट्रिपल जंप की, जहां भारत की आशा इलांगो ने आखिरी अटेम्प्ट तक पोडियम के लिए पूरा जोर लगाया. अपने सिक्स और फाइनल अटेम्प्ट में आशा ने 13.59 मीटर की जंप लगाई और फोर्थ पोजीशन पर कंपटीशन खत्म किया. यानी पोडियम से उनका मामूली अंतर रह गया. इसी इवेंट में भारत की एक और एथलीट निहारिका वशिष्ठ ने हिस्सा लिया और वो 10th पोजीशन पर रहीं. अब रुक करते हैं हेप्टाथलॉन का, जहां भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन पहले दिन थोड़ा निराशाजनक रहा, लेकिन अभी उम्मीदें बाकी हैं. आज पहले दिन 4 इवेंट्स पूरे हो चुके हैं और अगर हम भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं अनामिका की. अनामिका ने 100 मीटर बाधा दौड़ 14.80 सेकंड में पूरी कर 868 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.74 मीटर की कूद लगाकर 903 पॉइंट्स, शॉर्ट पुट में 11.15 मीटर के थ्रो के साथ 605 पॉइंट्स और 200 मीटर दौड़ 25.96 सेकंड में पूरी कर 801 पॉइंट्स हासिल किए. इन चारों इवेंट्स को मिलाकर उनका कुल स्कोर 3,177 पॉइंट्स बना, जिसके बाद वे 7वें स्थान पर रहीं. वहीं दूसरी ओर पूजा ने 100 मीटर बाधा दौड़ 14.61 सेकंड में पूरी कर 894 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.71 मीटर की छलांग लगाकर 867 पॉइंट्स, शॉर्ट पुट में 11.44 मीटर थ्रो के साथ 624 पॉइंट्स और 200 मीटर दौड़ 26.27 सेकंड में पूरी कर 774 पॉइंट्स हासिल किए. पूजा का कुल जोड़ 3,159 पॉइंट्स रहा और वे 9वें स्थान पर बनी हुई हैं. लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है. कल दूसरे दिन बाकी 3 आखिरी इवेंट्स खेले जाएंगे, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो और 800 मीटर दौड़. इन तीनों इवेंट्स का खेल पूरा होने के बाद ही सभी खिलाड़ियों के कुल अंक जोड़े जाएंगे और पहला, दूसरा और तीसरा स्थान यानी पोडियम फिनिश तय होगा. भारतीय फैंस की नजरें कल अनामिका और पूजा की जोरदार वापसी पर होंगी. तो एथलेटिक्स में भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन लगातार सुर्खियों में है. सिल्वर और ब्रॉन्ज के साथ भारत ने पोडियम पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, जबकि कई भारतीय एथलीट्स क्वालिफिकेशन और स्ट्रॉन्ग फिनिशेस के जरिए अगले मुकाबले की ओर बढ़ रहे हैं.
0: Now time to get you all the updates from shooting. Shabab Anwar has more.
2: भारतीय निशानेबाज अनंतजीत सिंह नारोका और परिनाज धालीवाल की जोड़ी ने भारत को निशानेबाजी का 8वां पदक दिलाया. ये भारतीय जोड़ी शॉटगन के स्किड मिक्स्ड स्पर्धा के फाइनल में 48 में से 44 निशाने लगाकर तीसरे स्थान पर रही और कांस्य पदक जीता. वैसे तो भारत और दक्षिण कोरिया का स्कोर बराबर रहा था, लेकिन टाई ब्रेकर के बाद भारत को ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा. ये मौजूदा एशियन गेम्स में शूटिंग में भारत का 8वां मेडल है। इसमें

0: The Indian contingent was in action in Kabaddi. Prerna Sharma has more.
1: Asian Games में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एक बार फिर अपने अभियान को जीत की लय में आगे बढ़ाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीनी ताइपे के खिलाफ 37-21 की जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में सभी चार मुकाबले जीत कर ग्रुप स्टेज का समापन किया। यानी अब खिताब की राह में भारत के सामने सिर्फ दो मुकाबले और हैं। अब कल सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मुकाबला थाईलैंड से होगा। दूसरी तरफ अगर महिला कबड्डी की बात करें तो मेजबान जापान के खिलाफ भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50-25 की बड़ी जीत दर्ज की। आखिरी रेड में बोनस पॉइंट्स के साथ भारत ने अपनी एशियन गेम्स अभियान का ग्रुप स्टेज खत्म किया। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में लगातार तीसरी जीत हासिल की और टॉप पर रहकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल से होगा।
0: There was more good news for India from the table tennis arena. Let's hear from Sakshi Manwal.
2: India have marched into the third round in women's doubles table tennis with Diya Chitale and Yashaswini Ghodpade securing a straightforward 3-0 win with the scoreline reading 11-2, 11-2, 11-4. In women's doubles round 2, another Indian women's doubles team showed its class with a 3-0 win over Mongolia. Shreeja Akula and Cinderella Das began their women's doubles campaign in style, cruising to a comfortable 3-0 victory with the scoreline reading 11-5, 11-4, 12-10 over bowler Erdine Buttbook and Sanja. In men's single round 1, Indian paddler Manush Shah started his men's singles campaign with a win over Malaysia's Wong Kui Shen. Manush prevailed over Wong with a clean 4-0 scoreline that read 11-9, 14-12, 11-7, 11-4.
0: It was a tough day for the Indian fencing contingent. Prerna Sharma has the details.
1: महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग स्पर्धा में भारत की सीए भवानी देवी और श्रेया गुप्ता ने राउंड ऑफ 16 तक का सफर तय किया। दोनों खिलाड़ियों ने पूल स्टेज से नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, लेकिन राउंड ऑफ 16 में मिली हार के साथ इस स्पर्धा में भारत का अभियान समाप्त हो गया। भारत की पहली ओलंपिक फेंसर सीए भवानी देवी ने पूल 4 में 5 मुकाबले खेले, 2 जीत के साथ वह पूल 4 में चौथे स्थान पर रही और नॉकआउट स्टेज में पहुंची। इसके बाद राउंड ऑफ 32 में भवानी ने मुकाबले में 15-8 से जीत दर्ज की और राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनके सामने चीन की राओ शुएई थी, जो 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता हैं। राओ ने मुकाबले में शुरुआती बढ़त हासिल की और अंततः 15-5 से जीत दर्ज की। इसके साथ भवानी देवी का एशियन गेम्स 2026 में महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग अभियान समाप्त हुआ। दूसरी ओर श्रेया गुप्ता ने पूल 2 में तीसरा स्थान हासिल कर सीधे राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। पूल स्टेज में उन्होंने 3 मुकाबले जीते, जबकि 2 में उन्हें हार मिली। तीसरे स्थान के कारण उन्हें राउंड ऑफ 32 में मुकाबला नहीं खेलना पड़ा। राउंड ऑफ 16 में श्रेया का सामना दक्षिण कोरिया की जॉन हा यंग से हुआ। पेरिस ओलंपिक 2026 की रजत पदक विजेता जॉन ने श्रेया को 15-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
0: The Indian contingent strived hard to make an impact in swimming. Sakshi Manwal tells us the results.
2: India's Benedictine Beniston finished 5th in the Heat 5 of men's 50-meter butterfly event, failing to qualify for the final directly but was placed in reserves. He finished 12th overall. In men's 4x100-meter freestyle relay heats, Benedictine Beniston, Anish Sunil, Akash Mani and Gitesh Shah were eliminated in the heats after finishing last in their 6-team race. They recorded a time of 3 minutes 23.51 seconds, leaving them 12th overall out of 13 teams.
0: It was a tough day for India in canoe. Sakshi Manwal has more.
2: India faced a disappointing day in canoe sprint with all 4 entries missing out on medals at the Miyoshi Lake canoe course. Raju Rawat and Film Gyaneshwar Singh finished 9th and last in the men's canoe double 500-meter finals, choking 1 minute 56.121 seconds. The Indian pair finished 15.380 seconds behind gold medalists China's Wu Shengyu and Ji Bowen. India's men kayak 4 finished 7th in the 500-meter finals with the quartet of Nayocha Singh, Lithon Jim, Varinder Singh, Oinam Arun Singh and Harshvardhan Singh Shaktawat clocking 1 minute 28.982 seconds. In the women's kayak double 500-meter game, Sonia Devi and Parvati Geeta failed to make the final after finishing last in their semi-final in 2 minutes 1.020 seconds. Megha Pradeep also missed out in the women's canoe single 200-meter final after finishing 4th in her 5-boat semi-final in 51.093 seconds. Megha finished 1.666 seconds behind the winner.

0: Let's now hear from the latest from what happened in the esports arena with Prerna Sharma.
1: Esports एक ऐसा खेल जो मैदान पर नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर खेला जाता है. भारत के लिए esports से अच्छी खबर आई है. भारत के डेब्यूटेंट परितोष ने ग्रुप बी में 2 जीत और 2 हार के साथ तीसरा स्थान हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब परितोष पोयो पोयो चैंपियंस के क्वार्टर फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. उन्होंने esports में भारत की चुनौती को अगले चरण तक पहुँचाया है.
0: 5 medals have come on a terrific Thursday for the Indian contingent. Here's the latest from the medals tally.
1: और इसी के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए एक और रोमांचक दिन समाप्त होता है, जहां एथलेटिक्स, वुशू, शूटिंग और रोइंग में 5 नए पदक, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जुड़ गए. अगर मेडल टैली की बात करें तो टॉप 3 देशों में चाइना 80 गोल्ड, 30 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज के साथ कुल 130 मेडल जीत कर पहले स्थान पर है. जापान 20 गोल्ड, 34 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज के साथ कुल 91 मेडल लेकर स्थान पर है. दक्षिण कोरिया 10 गोल्ड, 12 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ कुल 50 मेडल जीतकर तीसरे स्थान पर है. वहीं भारत 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मिलाकर कुल 14 मेडल के साथ 15वें स्थान पर बना हुआ है.
0: So a good day for India today, but they'll be hoping for a lot more on September 25th, Friday. India's hopes will be on shooting when the men's 50-meter rifle 3 positions individual and team final with APS Tomar, Rudraksh Patil and Neeraj Kumar holding India's hopes. Kamaljeet and Suruchi Inder Singh will also be representing India in the shooting 10-meter air pistol and hoping to make it to the final. It's a crucial day for Kabaddi. It's semi-finals time for both men's and women's as India faces Nepal in the women's Kabaddi and India then face Thailand in the men's Kabaddi semi-final. 2 medals came for India in athletics today. Will the athletes tomorrow do well? Well, Manpreet Kaur and Krishna J. Menon are in action in the women's shot put final, while the women's pole vault final sees Sindhushri Ganeshan and Baranika Elangaval in action. We had success in the women's 10,000 meter. Will Gulveer Singh do well for India in the men's 10,000 meter final tomorrow? And then Meet Singh and Praveen Kumar are in action in the men's hammer throw final. Apart from the gold medal events, India are also in action in hockey, where the women's team takes on Japan. Sachin and Preeti are in action in boxing, while Animesh and Gurvinder will try to make it to the finals in the 100-meter athletics. India will also be seen in the action in surfing, fencing, badminton, keno, swimming and esports. So here's hoping for a great day from the Indian contingent. So that's all from the special Asian Games report on Akashwani. From producer Shehnawaz Khan, editor Vishal Kumar and me Abhinav Punchi, we bid you farewell and hoping that India have a glorious Friday and do well in the Asian Games. Thank you for listening.
2: Asian Games 2000. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026 ದಿನದಾಟದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂತು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.